FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र

0: वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला टी20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन। विषय है गांव की ओर।

भारत माता ग्राम वासनी अर्थात माँ भारती का साक्षात रूप हमारा ग्राम है, क्योंकि भारत माँ गांव में बसती है। अतः ग्राम का पूर्ण शिक्षित होना राष्ट्र का शिक्षित होना समझा जाता है। हमारा ग्राम जितना समृद्धशाली होगा, हमारा देश भी उतना ही समृद्धशाली बनेगा। बापू का सपना गांव की समृद्धि में ही निहित है, इसीलिए तो आजादी की शंख ध्वनि महात्मा गांधी द्वारा गांव से ही आरंभ हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद लोग गांव की ओर आने लगे और आजकल तो गांव चलो का आंदोलन एक जरूरी अंग बन गया है। सभी ये अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के सच्चे गांव हैं, जहां हम सबों की रक्षा होती है। गांव के लोग प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, पर उन्हें इस आनंद भरे जीवन का पता नहीं रहता। ग्रामीण इलाके की नर नारियां, वृद्ध बच्चे वैसे ही किसी अनजान व्यक्ति के प्रवेश करने पर निहारने लगते हैं जैसे प्यासा एक बूंद पानी के लिए निहारता है। उनकी चाहत जाने बगैर कोई इस राह से गुजर जाता है तो वे हाथ मलते रह जाते हैं, दो मीठी बोलियों के लिए जैसे वे उन्हें एकटक निहार रहे हों। वे अपनी बातों को उन तक रखने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि किस तरह उनसे बातें की जाएं। इसी माहौल में यदि कोई पढ़ा लिखा युवक है तो ग्रामीण उसी को पदाधिकारी के पास बातें करने, आवेदन लिखने इत्यादि का भार सौंपते हैं। यदि वह युवक इनसे बेईमानी करे तो भला वे सीधे साधे अनजान बने लोगों का क्या कसूर है। पर आज स्थिति कुछ बदली बदली नजर आती है। ग्रामीणों में एक नई ललक पढ़ाई लिखाई के प्रति देखी जा रही है। बूढ़े बूढ़ियां भी स्लेट पेंसिल लेकर गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों के साक्षरता केंद्रों पर पढ़ने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। वे जब एक शब्द लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो मानो वे खुशी से झूम उठते हैं और नए शब्दों को जानने के लिए अपने मास्टर बने बच्चों से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं। वे उस समय उस नन्हे से शिक्षक को अपना सच्चा गुरु मानने के लिए विवश हो जाते हैं। सचमुच ये शिक्षा या सीखना जो शब्द है वो किसी से भी सीखा जा सकता है। सीखने में उम्र की बाध्यता नहीं होती, न सीखने में ही और न सिखाने में ही। सीखना और सिखाना जीवन पर्यंत चलने वाला घटना चक्र है। कभी हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमें भी वो अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीख देता है। उससे भी इसकी जानकारी लेकर अपने जीवन में उतारना सीखना ही है। जरा सोचें, जो वृद्ध नर नारी आज साक्षरता केंद्रों के खुलने पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, क्या वे अपने गुजरे समय में काम धाम खेती बाड़ी या लेन देन नहीं करते थे? संभव है हम पढ़े लिखे व्यक्तियों से गलतियां हो जाती हैं, पर एक अनपढ़ खूब सोच विचार कर सही ठेपा लेन देन करता है। वो सैकड़ों बार मनन चिंतन कर दूसरों से पूछताछ कर पढ़े लिखे व्यक्तियों से संपर्क कर ऐसा काम कर दिखलाता है जिसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होती, पर उसे चिट्ठी या आवेदन को दूसरों से लिखवाने की बाध्यता होती है, जिसे हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम साक्षरता मिशन पूरा कर रहा है। आज गांव में अशिक्षा रूपी गुलामी से हर व्यक्ति अपने को आजाद कर रहा है, जो ग्रामीण लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे ग्रामीण जब साक्षर हो रहे हैं तो निश्चित ही इसका लाभ हमारे राज्य और राष्ट्र को प्राप्त होगा। अब वे अपना हानि लाभ समझते हुए सभी कार्यक्रमों को सही दिशा देने में अपना योगदान देंगे। आज बापू का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सचमुच अशिक्षित रहना देश समाज का कलंक है। इस कलंक से हम आज छुटकारा पाने की दिशा में प्रेरित हैं। अब सफलता हमारे कदम चूम रही है। गांव खुशहाल होगा तब हमारा देश और समाज भी खुशहाल होगा। इस खुशहाली को बहाल करने के लिए साक्षरता कर्मियों का
योगदान हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन गांव की ओर। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में यह भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 397। 397।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हुआया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय है कार्यक्रम विवरण का, तो बता दे आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर में 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। सुबह 7 बजे होगा लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। विज्ञान वार्ता ये आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। गीत संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से।

8:45 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग मेलोडी। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम भी आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से। 10 बजे होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 11:58 पर सुनेंगे विज्ञापन। 12 बजे से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 12:58 पर सुनेंगे विज्ञापन। 1 बजे से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। चार बजे सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4:30 में सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी की आज की कड़ी। 5:02 पर सुनेंगे इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। 6 बजे सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर कार्यक्रम होगा युग वाणी। पर सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, ये आप सुनेंगे संध्या 7:15 पर। 7:30 से सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स। 7:45 पर सुनेंगे कानूनी सलाह। 8 बजे का समय होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाह।

0: 8:10 से सुनेंगे विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9 और 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 10:30 पर सुनेंगे एक फिल्म से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। ये थी आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।
1: प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथवार्ताः। प्रशासनेन CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा OSM इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एकसदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षा क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थं उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलं आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः संबोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिक रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते।

0: उत्तरप्रदेशेषु तीव्रझंझावातेन सह गर्जनस्य तडित्पातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम लोक रंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको सुनवा रहे हैं शिवनंदन पांडे गरीब की आवाज में यह खोरठा लोकगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सियाराम पासवान की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम विज्ञान वार्ता के अंतर्गत साइबर क्राइम। वार्ताकार हैं गोपाल कुमार सिंह।
1: नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह है और आज मैं साइबर अपराध के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो 1980 के दशक से ही यहां पे अपराध जारी है, लेकिन आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर आधुनिक अपराध हो रहा है तो वो है साइबर अपराध। और साइबर अपराध से हर वर्ग के लोग, हर किस्म के लोग बड़े ही परेशान चल रहे हैं। साइबर एक ऐसा चीज ही है जिससे हर लोग परेशान है। आखिर ये साइबर क्राइम आखिर है क्या? साइबर क्राइम वो अवैध गतिविधियों को कहते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। इन अपराधों के माध्यम से अपराधी व्यक्तिगत जानकारी चुराने, वित्तीय धोखाधड़ी करने या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और खास करके जिनको कंप्यूटर में ज्यादा नॉलेज होते हैं वो लोग खास करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। अब इसमें तरीके देखा जाए तो तरीके इसमें क्या क्या है साइबर अपराध को अंजाम देने का, तो वो है हैकिंग है, मालवेयर है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर टेररिज्म है, साइबर डिफामेशन है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, सॉफ्टवेयर पायरेसी है। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी जो चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा चीज है जिसमें लोग हैरैश हो रहे हैं, डिजिटली हैरैश हो रहे हैं। उनको बताया जा रहा है अगर उनके बच्चे यहां से बाहर पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं या फिर उनका फैमिली कहीं बाहर रहता है, बहुत दूर रह रहा है, उनसे अगर दूर रह रहा है तो उसमें साइबर अपराधी जो हैं उनको डिजिटली बताते हैं कि आपके बच्चे ने या फिर आपके परिवार वालों ने कुछ गलत किया है जिस वजह से वो जेल जाने की उनकी नौबत आ गई है, इन्हें बचाने के लिए आप तुरंत के तुरंत पैसे भेजें। और वो डिजिटली दिखाते हैं कि उसमें एक पुलिस वाला कॉल करता है, घर के गार्जियन को दिखाया जाता है, घर के लोगों को दिखाया जाता है कि उनके बच्चों को एक कोर्ट में खड़ा किया गया है जहां पे पुलिस वाला भी है, जहां पे एक जज भी बैठा हुआ है, जहां पे एक वकील भी खड़ा है और सब चीज वहां पे प्रॉपर। ये फॉस्टर जो होते हैं वो लोग ये सब काम करते हैं। इससे बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं लेनी है, आप अपने मन को धैर्य में रखना है और तुरंत ही साइबर क्राइम का एक जो पोर्टल है cybercrime.gov.in उस पर आप जाके तुरंत शिकायत अपडेट दर्ज कर सकते हैं। इन अपराधों से बचाव के लिए सतर्क रहना, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, अनजान स्रोतों से प्राप्त ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करना और नियमित रूप से अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना आवश्यक है। अब इसमें देखा जाए तो भारत सरकार ने भी कुछ कुछ इसमें इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय ने कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए दोनों ने पोर्टल बनाया हुआ है, एक ऑनलाइन बनाया हुआ है और एक हेल्पलाइन बनाया हुआ है। ऑनलाइन में जो बनाया है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि है cybercrime.gov.in, और एक हेल्पलाइन भी जारी किया है उन्होंने जिसका नाम है राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930। अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी या फिर कोई भी साइबर अपराध अगर हो जाता है तो आप इसमें चिंतित ना हो, व्याकुल ना हो, आप 1930 या फिर cybercrime.gov.in पे आप इसको शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि हाँ इसका उपाय क्या है बचने के लिए, तो सबसे पहला रेटली उपाय इसका यह है कि हमेशा अपने फोन का, लैपटॉप का या फिर कुछ भी डेटा हो तो उसका मजबूत पासवर्ड का हमेशा उपयोग करें।

0: अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए जटिल और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं, जिसमें अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण हो। अपने सिस्टम, ब्राउजर और सुरक्षा सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें, ताकि नए सुरक्षा पैच लागू हो सके और संभावित खतरों से बचा जा सके। इंटरनेट सुरक्षा सुइट का हमेशा उपयोग करें। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का हमेशा उपयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय वीपीएन, जी हाँ, वीपीएन का उपयोग करें, ताकि आपका डाटा सुरक्षित रहे और साइबर अपराधियों से भी सुरक्षित रहे। हमेशा ध्यान दें कि एपीके फाइल को कभी भी अपने फोन में, लैपटॉप में या फिर किसी भी डिजिटल चीज में कभी भी डाउनलोड ना करें। ये साइबर अपराधियों की एक चाल होती है। हमेशा अपने फोन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। सुरक्षित होम नेटवर्क का हमेशा सेटअप करें। हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखें। महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें, ताकि अन्य साइबर हमलों को दौरान डेटा की हानि ना पहुंचाया जा सके। साइबर सुरक्षा जागरूकता हमेशा बढ़ाएं। स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की ऑनलाइन अननोन लिंक पे क्लिक कभी ना करें। इन उपायों को अपनाकर आप साइबर अपराध के खतरों से अपनी और अपने परिजनों को सुरक्षित सुनिश्चित कर सकेंगे। भारत सरकार में साइबर अपराध की वर्तमान स्थिति। गृह मंत्रालय की 2023 से 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से मार्च 2024 के बीच में भारत साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 2.16 करोड़ शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें कुल 14,570 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर अपराधियों की गतिविधियां कितनी व्यापक हो चुकी हैं। साइबर अपराध की रोकथाम और समाधान के लिए सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने और नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको हम लोग cybercrime.gov.in कहते हैं, यह पोर्टल पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह उपयोगकर्ता अनुकूल मंच हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसे अपराध की रिपोर्टिंग में सहायक है। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए यह हेल्पलाइन उपलब्ध है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल और हेल्पलाइन को उपयोग करके हम साइबर अपराधों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। साइबर अपराधी ज्यादातर करके अपना शिकार छोटे बच्चों या फिर महिलाओं या फिर बुजुर्ग को बनाते हैं। वह जानते हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल में ऐसा ऐसा एक गेम डालते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, ऐसा उन्हें बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप 2 रुपए लगाओ, 4 रुपए कमाओ, ऐसा ऐसा करके बच्चों को ज्यादातर करके शिकार बनाते हैं। खास करके महिलाओं को भी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे ठगी करने का मामला इसमें आता है। इसमें ज्यादातर के एपीके फाइल जो होता है उनमें क्लिक करवा के उनका सारा डेटा हैक कर लिया जाता है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार थे गोपाल कुमार सिंह, जो बता रहे थे साइबर क्राइम के बारे में। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गीत संगीत।

कार्यक्रम गीत संगीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का नमस्कार। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

0: अभी आपने सुना पंकज उदास की आवाज में ये गीत। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के

0: पावर से बिजली बिल
1: सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में

0: प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार

0: पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 对。
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में पाकुड़ के झकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नए दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का किया खुलासा। गढ़वा के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राजधानी रांची सहित राज्यभर में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएसपीएस के तैराकों का शानदार प्रदर्शन। प्रथमी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। और अब समाचार विस्तार से। पाकुड़ के झकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह देशभर की चयनित पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 42 पंचायतों का चयन किया गया है। झारखंड की झकरहाटी पूर्वी पंचायत का चयन महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला हितैषी पल के लिए किया गया है। पंचायत को सम्मान के साथ 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। ये उपलब्धि राज्य की पंचायतों के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की सुविधा के लिए नए दाल भात केंद्र खोलने तथा मॉडल दाल भात केंद्र विकसित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में राशन कार्ड वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, पीवीटीजी, डाकिया योजना, धान अधिप्राप्ति और खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने रांची स्थित रिम्स का दौरा किया। रिम्स की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिम्स का दौरा करने की अपील की।
2: कहीं देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर खामियां का उजागर होते ही रहता है, तो इसको सुधार की जरूरत है। इसलिए इसको मुख्यमंत्री जी को कभी कभी समय मिलता है तो रिम्स है उसका व्यवस्था को देखने के लिए आना चाहिए। आज लोग हड़ताल में है, अगर स्वास्थ्य जैसे विभाग हड़ताल में चले जाएंगे तो मरीज को कौन देखेगा।
1: रांची नगर निगम ने मॉनसून से पहले शहर में अतिक्रमण, अवैध जल कनेक्शन, पार्किंग व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने हिंदपीढ़ी क्षेत्र में हरमू नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से गाद निकालने का कार्य तेज करने तथा नदी की जलधारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए।
3: जो नदी के किनारे है अलग अलग तरीकों से उसका अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली अगर कहें तो कंस्ट्रक्शन दिखता है, बट उस पर जो गंदगी फेंकने के अलग अलग तरीकों से लोग अपना फेंक रहे हैं और वो जो अवैध कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो रहा है, हर एक चीज वो भी एक तरह का अतिक्रमण है या एक तरह का वो नदी का जो है डिस्टर्बेंस का आयाम है,

0: आईआईएम रांची में आज से दो दिवसीय टीचिंग विद केसेस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विलिस एम एमन्स शिक्षकों को केस आधारित शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण देंगे। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में केस आधारित और प्रतिभागी केंद्रित शिक्षण पद्धति को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से कक्षाओं में संवाद, चर्चा और व्यावहारिक सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभुक सेवती साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सेवती साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है।
1: सेवती साहू हूँ, मैं वार्ड नंबर 9 तेली साय सारिकला की निवासी हूँ। मुझे उज्ज्वला गैस मिला है जिससे मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमें धुएं से राहत दिला के आज उज्ज्वला गैस का उपयोग कर रहे हैं।
0: राजस्थान के दौसा जिले की पुलिस ने नकली नोट छापने और उनकी सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से गढ़वा जिले की खरौंदी निवासी विशाल उपाध्याय और अलीगढ़ निवासी संतोष सिंह वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से प्रिंटिंग मशीनों के साथ 24,84,000 रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात ने अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक के दुकानदारों के साथ बैठक कर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क किनारे दुकान लगाने के मुद्दों पर चर्चा की। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: मार्केट और ये मेन रोड के जितने भी दुकान के दुकानदार हैं और जो फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं उन सभी के साथ मीटिंग किया और सभी को समझाया गया है कि जो सड़क पे अपना सामान वो सड़क पे फैला के रख देते हैं और वहाँ उसकी वजह से जो जाम की समस्या होने लगती है, कि समझाया गया है कि आपके अपना घर समझ के इसको व्यवस्थित करें।
0: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। 4 और 5 जून को राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSSPS के तैराकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में प्रथमी सिंह सरदार ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 5 पदक जीते। वहीं लखिंदर सिंह मुंडा ने 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव के हटाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची के सार्थक ने बताई ओएसएम की 15 कमियां, चेयरमैन और सचिव हटाए गए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, XLRI निजी प्रबंधन संस्थान देश में दूसरे स्थान पर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लचर एम्बुलेंस सेवा की शिकायतों पर सीएम नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में पाकुड़ के झिकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नए दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्य नकली नोट गिरोह का किया खुलासा। गढ़वा के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राजधानी रांची सहित राज्यभर में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएसपीएस के तैराकों का शानदार प्रदर्शन। प्रथमी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मैं हूँ रचना और आगे का सफर आप मेरे साथ तय करेंगे।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तोहफा से यह गीत, आशा भोसले और किशोर।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में इरशाद कामिल ने लिखा है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल ने लिखा है और ए आर रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसेक सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

फिल्म खामोशिया का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है, उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
0: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार है सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया।

हीरोइनों की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माई गॉड में इस गाने को विशेष तौर पर शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब

9 जून 1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है रावडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

सोनाक्षी सिन्हा की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में और भी हैं, जैसे कि वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी फिर भाग जाएगी, मिशन मंगल, दबंग 3।

0: दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का नमस्कार जोहार। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुविचार, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। तो दोस्तों, अपने सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य को बनाएं, उस पर दिन रात मेहनत करें और आगे बढ़ें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, आज 3 जून है, तो जानते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। 3 जून 1994 को भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। दोस्तों, आज ही के दिन 2004 में केन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्व कर्ता बने। आज ही के दिन 2005 में फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन को दोहराया। इस बारे में आगे भी बातचीत करेंगे, अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, आज 3 जून है, तो आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 3 जून को मुख्य रूप से विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साइकिल के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में यह दिन घोषित किया गया था। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह तो आप सभी जानते ही हैं। साइकिल का आविष्कार 1817 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। दोस्तों, प्रतिदिन साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि यह एक अच्छा व्यायाम है। इससे जोड़ सुरक्षित रहते हैं। मात्र 30 से 45 मिनट की साइकिलिंग पूरे शरीर को चुस्त, मजबूत और बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है। दोस्तों, हृदय के लिए साइकिल चलाना वरदान है। यह हृदय गति को बढ़ाकर रक्त संचार में सुधार करता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम कम होता है। साइकिल चलाने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है, जो वजन घटाने और पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। साथ ही साइकिल के पैडल मारने से जांघों को, कुल्हों और पैरों की मांसपेशियों का एक शानदार वर्कआउट होता है, जो घुटनों को बिना नुकसान पहुंचाए ताकत देता है। दोस्तों, साइकिल चलाने से शरीर में खुश रहने वाला हार्मोन एंडोर्फिन निकलता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। ताजी हवा में साइकिल चलाने से नींद अच्छी आती है। साइकिल चलाने से फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर का स्टेमिना और सहन शक्ति बेहतर होती है। दोस्तों, साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। साइकिल यात्रा का एक प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली साधन है, जो हवा को साफ करने में योगदान देता है। तो दोस्तों, सभी को साइकिल चलाना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। लेकिन जिन्हें किसी तरह की बीमारी हो, परेशानी हो, तो उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही साइकिल चलाना चाहिए। और हमेशा स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

दोस्तों, अब नज़र डालते हैं न्यूज़पेपर की सुर्खियों पर। तो अब झील क्षेत्र बनेगा नो व्हीकल जोन, शहर के 5 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर लगेगी रोक। पुलिस अधीक्षक, मेयर, नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने झील क्षेत्र का किया निरीक्षण। इस पहल से झील क्षेत्र में प्रदूषण और शोरगुल में आएगी कमी, पैदल यात्रियों के लिए होगा सुरक्षित। साथ ही झारखंड T20 लीग में चयनित खिलाड़ी अमन को विधायक ने किया सम्मानित। पचास करोड़ खर्च कर बनाया जा रहा है सर्विस रोड, जो बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। सर्विस रोड बनने से शहर व आसपास के क्षेत्रों में जाम से मिलेगी राहत। सड़क किनारे सूखे पेड़ को काटा जा रहा है, जिससे कि आगे में बहुत सुविधा होगी। उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग का किया औचक निरीक्षण। इचाक मोड़ पर रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश।

मेयर ने हॉकरों से की मुलाकात, समस्याओं को सुन जल्द समाधान का दिलाया भरोसा। दारू कविलासी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा, ग्रामीणों में दहशत। हजारीबाग में 30 छात्रों को निजी कंपनी में मिली नौकरी। कांग्रेस महिला मोर्चा सम्मेलन में उमड़ी भीड़, प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको का भव्य स्वागत।

दोस्तों, गर्मी का मौसम है, ऐसे तो सभी मौसम में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में खासकर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। इसके लिए है कि समय पर सोना और समय पर जागना ये तो चाहिए ही, और साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करें और अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें और अधिक से अधिक पानी पिए, और धूप में बहुत जरूरी ना हो तो धूप में नहीं निकले, और अगर बहुत जरूरी हो तो अपने सर को ढक ले, चाहे छाता से, टोपी से या फिर सूती गमछा से ढक कर ही बाहर निकले। अब बाहर की खुली चीजें कभी ना खाएं, और अपने भोजन में पानी युक्त फल का उपयोग जरूर करें, जैसे खीरा, तरबूजा, ककड़ी, ये सब जरूर खाएं, और देसी पेय, ज़्यादा से ज़्यादा देसी पेय का ही उपयोग करें, जैसे लस्सी है, छाछ है, शरबत है, सत्तू का शरबत है, ये सब अपने में भोजन में शामिल करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।

0: रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज में, शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और खान साहेब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज्म, जो कि है उर्दू गजल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे मुकेश गजल्स एल्बम से, मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गजल जो होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ में एहसान मीरती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल्स एल्बम से लिया गया है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराज़े गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये है एक प्यारा सा नगमा, आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज में है।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज में, सूरज सनीम के बोलो, ललित सेन के संगीत के साथ।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का गोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एक अलग जो विद्यालय को दिया गया है, मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहां ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा

0: और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत। देवदास फिल्म से गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजा कर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

Mamma, mamma.

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कभी बेख्याल हो
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देव बर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है

वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है, जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है, हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नजर से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमयी इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है, और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की खामोश भाषा और प्यार के नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह, कश्मकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा, शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगाव हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिखकर देखूं क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इजराहे मोहब्बत होती है। बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा जरूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए। तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना, बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज किसकी है?

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में एक्सएलआरआई देश में दूसरे स्थान पर और आईआईएम रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सशक्त बनाने संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचनी चाहिए।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े। अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं। जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: केंद्र सरकार ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। साथ ही खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी खामियों और मूल्यांकन संबंधी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला हितैषी पंचायत के रूप में राष्ट्रीय पहचान मिली है। लगभग 17,500 की आबादी वाली इस पंचायत में झिकरहट्टी पूर्वी समेत 8 गांव शामिल हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र और उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग भी की है, ताकि महिलाओं और छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया कि इस पंचायत की तरह ही अन्य पंचायतों को बढ़ाने का काम किया जाएगा।
2: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है। इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे फ्यूचर में, ताकि हम अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण और उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे।
0: आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के कई शिक्षण संस्थानों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। निजी प्रबंधन संस्थानों में जेवर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि आईआईटी धनबाद सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में 11वें स्थान पर रहा। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को प्रबंधन शिक्षा में 18वां, बीआईटी मेसरा को निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में 10वां तथा आईआईटी को अपनी श्रेणी में 18वां स्थान हासिल हुआ। आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस की थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। यह दिवस हर वर्ष 3 जून को साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SMCU में ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े जंबो सिलेंडर का पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ। उपाधीक्षक डॉक्टर राजकिशोर के निर्देश पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइप को बदलकर ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल कर दी गई। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने भी मामले की जानकारी मिलने पर अपने प्रतिनिधि को अस्पताल भेजा और स्थिति की जानकारी ली। खूंटी जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून से सप्ताह भर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला वन पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिले के विभिन्न गांवों, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हर वन रक्षक GFMC गांव के मुखिया प्रधान जाके वहां पे बैठक करें और विश्व पर्यावरण से संबंधित जो बिंदु है उसके बारे में गांव से विचार विमर्श करें और क्या अपेक्षित है वन विभाग से और किस तरह से हम और एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर एक डिस्कशन है।
0: पाकुड़ के अमरापाड़ा में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान कई पेड़ों की कटाई की गई। DFO सौरभ चंद्रा ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है।
4: अमरापाड़ा रेंज में पकलों के पास एक रोड RU विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, इसकी पूर्वानुमति विभाग द्वारा नहीं प्राप्त की गई है। स्थलीय प्रबंधन के कारण में जो हमारे वहाँ प्रधान वनरक्षक उन्होंने पाया था कि बिना अनुमति के वहाँ पर रोड बनाने के क्रम में कई पेड़ को उखाड़ दिया गया है और वन भूमि का वहाँ पर नष्ट किया गया है।
0: सरायकेला में विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य के जनक कुंवर विजय प्रताप सिंह की 130वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कलाकारों और गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने छऊ नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने में उनके योगदान को याद किया तथा इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जापान में चल रहे अंडर 18 महिला एशिया कप

हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने लीग चरण में अपने पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड की संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी और श्रुति कुमारी ने भी एक एक गोल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हॉकी झारखंड और राज्य खेल विभाग ने भारतीय टीम तथा राज्य के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सेमीफाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर स्थित टाटानगर स्टेशन पर वेंडरों और निजी एजेंसियों के कर्मचारियों को क्यूआर कोड आधारित डिजिटल पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ ही टाटानगर इस व्यवस्था को लागू करने वाला दक्षिण पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। देवघर में आयोजित जनता दरबार में मदद की गुहार लेकर पहुंचे दिव्यांग भवेश को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने मौके पर ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दानपात्र खोले गए। गिनती के बाद दानपात्रों से कुल करीब 26 लाख रुपए प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह राशि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में एक्सएलआरआई देश में दूसरे स्थान पर और आईआईएम रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में। झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये जमाना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विधि जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं, पर दिल में रहे तो ज्यादा अच्छी हैं। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटकट श्री कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नजर उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है, इस बात का भी एहसास कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी पेज पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूँ कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नजर आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था, हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा, ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एकमात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है। जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था, माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था, और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रहिए, प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है। हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर, दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहाँ उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है। हमारे श्रोता लिखता है, किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए,
1: ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुंचते हैं या अनकही बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है। शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कने ज्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हर लफ्ज के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाए, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको। जब आपका जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा। बताइए ये किस फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्जाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्निजीस में, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर मुझे कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक जमाने में खूब लिखे और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे श्रोता लिखते कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊं उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान वो भी, लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहां डाक किया सब चिट्ठियां डालकर जाता है, हमने पढ़ा सब जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था। फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते

थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं, और अगला गीत बस वही है खत के बारे में। लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं, और पहले का जमाना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए। तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत। ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

0: खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिर अंतरे में आशा भोसले गागा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी क्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना जरूर जाना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है। प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में तो जी। बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया। तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो सेवा नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी, तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: वैसे ही प्यारे आपका और हमारे बीच में आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या? उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज़ बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए। और आपने हमारी जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं। अब इसके साथ मुझे एक चीज और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई। देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है, आपने भी लिखे हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल इशारों इशारों में, रफी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है, मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है, और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये लिखते हैं कुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आके दीजिएगा इस गीत के साथ।

और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्क जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नए तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है, सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है, यहां तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा।

साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डार्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चैन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है। और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।

योग है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सब से बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में। करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी प्रकृति माँ के लिए और आपकी भारत माँ के लिए, सबके लिए सुरक्षित है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में

0: लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली

0: खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की

0: बुसानन ओम वाम रुंग फान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का ये गीत गीतादत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय समिति की आज तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हाल ही में विस्तारित की गई इस 7 सदस्यीय कमेटी में दो नए मंत्रियों शिल्पी नेहा तिर्की और हफिजुल हसन को शामिल किया गया है। इससे पहले हुई दो बैठकें बेनतीजा रहने के बाद आज होने वाली इस बैठक में सभी वर्गों के भाषाई और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर कोई ठोस फैसला लिए जाने की उम्मीद है। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर अपना फैसला सुनाएगी। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने की याचिका दायर की है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में अब आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पूर्वी सिंहभूम के युवाओं में भारी उत्साह है। युवाओं का मानना है कि मोदी सरकार का यह कार्यकाल देश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। स्थानीय युवा राम शांडिल्य के अनुसार स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं ने करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़कर उनमें नया आत्मविश्वास जगाया है।
2: मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवाओं के लिए नए नए योजनाओं से स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल रहा है, जिससे हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का जो मिशन है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
1: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए मरांगबुरु से प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद कार्यालय में समय पर न आने वाले कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने लेट लतीफ कर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। देर से पहुंचे कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अध्यक्ष ने कहा कि 2 महीने से मिल रही लापरवाही की शिकायतों के बाद आम जनता के काम बाधित होने से रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
3: 2 महीना से देखा जा रहा है कि भाई समय पर ऑफिस में कोई आते नहीं।

0: राज्यवादी हो रहा है। कई बार लिखित में भी लोगों से कहने दिया गया, लिखित में भी आदेश जारी किया गया, इनके बावजूद भी ये लोग पर किसी तरह का कोई काम पे जू नहीं देगा कि भाई समय से जाए समय से। तो आज हम अली जाकर देखे तो लोग 12:30 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, 1:30 बजे आते हैं। तो ऑफिस का जो गरिमा है वो धूमिल हो रहा था। तो आज हम ताला बंद कर दिए, जो बाहर है वो बाहर रहने।
1: रांची में असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर एसडीओ कुमार रजत के नेतृत्व में अरगोड़ा और हरमू क्षेत्रों में देर रात सघन जांच चलाई गई। सार्वजनिक स्थलों पर नशापान और अड्डाबाजी करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में कल रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दलांचल खरी गांव में सोते समय हुए इस हमले में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी परनी देवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के समय पास सो रही 1.5 वर्षीय बच्ची सुरक्षित है। एसडीपीओ आवेद खान ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रांची में झारखंड महिला टी20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनेमोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हरा दिया। छोटा नागपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए, जिसके जवाब में कोल्हान ने दुर्गा मुर्मू के नाबाद 56 रनों की बदौलत लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देखकर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक महक है
1: वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।

0: स्नेह वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
0: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
0: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं,
0: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
0: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ।
0: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
1: अरबी है,
0: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या है कि बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
0: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
1: अरे सारा मत बताओ।
0: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें, तब तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों के।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
0: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलबी रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मंदाकिनी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी,
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं।
1: हाँ।
0: ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं। और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते थे वही कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं, ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल। हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना? और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचें, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्मपत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं। और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्मपत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दे।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दे, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम, जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल

0: नहीं होंगे, इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे एक छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक
0: पहनावा।
1: पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घरचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है
1: जी
0: चंचल कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है, और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक।
0: हाँ।
1: और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में
0: प्रवेश करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात

0: रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। गठचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी गठचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
1: हैं, साइड में रख लेते हैं वो
0: जी।
1: भी,
0: हाँ। और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है, तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है। और ये पहले कपास से बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि गठचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें गठचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: गठचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो गठचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है गठचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और गठचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
1: महत्व होता है। बिल्कुल, और गठचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

तो कहा है प्यार का फसाना बना।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे।
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी
1: चाहिए। बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुक धुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में

0: हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
1: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
0: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
1: और भाई ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
0: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन लें।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं, और
0: साइकिल दे दी जाती थी, लेकिन
1: दुपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द है इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती है महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई हुई है
0: जी।
1: वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चिले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चिले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कड़ाही में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पीसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोडरमा के झुमरी तिलैया में एक महिला ने ई रिक्शा में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। निजी क्लिनिक जाते समय महिला को प्रसव पीड़ा हुई। मौके पर मौजूद एएनएम प्रियंका कुमारी ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित प्रसव कराया। एम्बुलेंस से तीनों को सदर अस्पताल भेजा गया। मां और दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में आईआईटी, एम्स, पीएसयू, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की ही देन है। रांची में 6 और 7 जून को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। सदर एसडीओ कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम तरुण होरिया ने आज सरायकेला खरसावां के कांडरा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा की। डीआरएम ने बताया कि कांडरा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आज नक्सल उन्मूलन और सुदूर क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार, एसपी अमित रेणु और सीआरपीएफ डीआईजी विनोद कार्तिक ने सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सारंडा और कोल्हान के दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। प्रस्तुति प्रभु शरण की है।
2: बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। बढ़ते कदम कार्यक्रम हमेशा एक उद्देश्य के साथ आपके बीच होता है। उद्देश्य होता है कि हम सरकार के उन तमाम योजनाओं की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं, जिनका लाभ लेकर हम और आप अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। और सरकार का भी प्रयास यही होता है कि वो अपने महत्वपूर्ण योजनाओं
3: पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे

0: है एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं. ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं, बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है. अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज. ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है. अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं. एक ग्रुप जहां पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहां पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे. फिर एक ग्रुप है जहां पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं. तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल. पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूं तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना. अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है. नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं. और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलियावर जंग.
1: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं.
3: क्या

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो पीएचडी कर रहा है,

0: सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद पीएचडी कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो पीएचडी हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलाडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है। ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो बीएसएलपी जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल, तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस, द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है, बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है, तो ये सब एक बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियरल रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयर

0: इंक्रीमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी. स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं. स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है. ओके, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं. तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था. RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग. एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं. तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
1: बिल्कुल. और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
0: राइट राइट राइट, हाँ,
1: तो उनके लिए भी
0: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं. एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है. ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ओके, तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें. क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके. दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प. बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज इज, जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है. तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है.

0: बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
1: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ.
2: श्रोताओं, सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं. श्रोताओं, लीजिए पेश है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहां तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहां का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
1: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहां अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजी जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी,
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
1: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
2: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
2: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
2: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
2: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
2: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
3: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
4: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
5: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
4: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
6: अरे वो देखो चिड़िया।
7: अरे वो देखो बंदर।
8: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
9: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
10: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
11: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
12: क्या करेंगे?
13: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
3: अचानक
11: ओ, ये तो रीछ की आवाज है।
14: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है।
11: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
12: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
11: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
12: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
3: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
12: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
3: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
11: ओ, अब मैं क्या करूँ?
3: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
11: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर ले जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
3: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
11: ये रीच तो मुझे सूंघे। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के डर रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
3: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
11: बच गए, लगता है रीच चला गया।
3: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
12: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
3: और अपने साथी से जाकर पूछा,
12: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
3: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
11: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
3: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
1: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको, रुको, रुको, रुको, रुको मैं, अरे मैं
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
9: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
10: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
10: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया।

0: अंगूपेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, सब तैयार हैं।
4: नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
6: ये है जंगल के उपकार,
7: मिट्टी पानी और बयान,
6: मिट्टी पानी और बयान।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से?
8: दो मिनट की बात तुम्हें बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
4: चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
7: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक

0: विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन गड़ों में जाओ, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में खान एवं भूतत्व विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने को कहा। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित एएनएम स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। पाकुड़ के पूर्व भाजपा विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का आज 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक है। विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्यभर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिमडेगा में मेरा युवा भारत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। रैली में युवाओं ने शहर का भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण और सेहत के लिए साइकिल अपनाने का संदेश दिया। रांची सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची के शिव कुमार रमन ने भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित एथलेटिक्स मीट मैनेजर कोर्स की परीक्षा पास कर राज्य का मान बढ़ाया है। पंजाब के पटियाला में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में देश भर के 21 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इसमें खेल प्रतियोगिताओं के आधुनिक और तकनीकी संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का, और इसी गीत का आइए आनंद उठाते हैं हम सब मिलकर के।

हम आपको बता दें कि आपने ट्यून किया एफएम हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी रेडियो के अपने साथी सूरज के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत अलका और सोनू निगम की आवाज में, फिल्म है हंगामा।

फर्स्ट लव लेटर। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। इसी के साथ ही इवनिंग मेलोडी का हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने वाले हैं। लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी।

खेती बाड़ी कार्यक्रम सुन रहे सभी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के नसीम के दाना से आदाब जो है नमस्कार। और आज हम बात करबे कि जल संरक्षण जो है कैसे करल जाए है और ओकर फायदा का है। तो आज हम अपन कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारी लान ले हिए, ओकर में जैसे बोलिए कि जल संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण पर भी बात होते हैं, जरूरी संदेश और गीत संगीत के भी हम इन मज़ा उठेबे, और फिर आखिर में एक लत्तेदार सब्जी में जो है का का कीड़ा लगो थिन, का का बीमारी होकर में हुआ है, वो सब पर भी हम जो है वो चर्चा करबे। तो आज शुरू करो ये कि आज जल संरक्षण जो है आज के समय में एकर मांग का है और एकर जरूरी का है, काहे है जन संरक्षण करे के। तो सबसे पहले एकर में जो बात हो वो है कि जल संरक्षण जो है कई इलाकों में जो है पानी के लिए पानी के जो है साफ सुथरा पानी पिए के जो है कमी हो वो है, साफ सुथरा पानी ना मिल पावो है। जन संरक्षण से ये समस्या से जो है अगर हम इन जन संरक्षण करो ये पानी के जमा करो ये तो एकर से जन संरक्षण जो समस्या हुआ है वो जो है दूर हो जाते, साफ सुथरा पानी पिए के भी हम इनके फराहम होते मिलते हैं। दूसरा ये है कि लगातार बोरिंग और पंप से जो देखा कि आजकल के ज़माने में जो है आजकल जो है यानी गहरा बोरिंग हो रहा है और पंप के द्वारा जो है पानी के निकासी हो रहा है ज़मीन से, तो एकर वजह से भी कहा कि पानी के लेयर जो है वो नीचे जा रहा है और हम इनके जो है पानी की समस्या का सामना जो है करे के पड़ रहा है। साथ ही साथ देखा कि कृषि के लिए जो है जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई बहन की जो पूरी कृषि जो निर्भर हुआ है वो पानी पर निर्भर हुआ है। वैसे भी हमने देखा कि साल भर में एक बार जो है खेती करो ये जो हम इनके कृषि आधारित फसल है धान के, तो और हम इनके जो पूरी जो कृषि है वो एकरे पर आधारित हुआ है। साथ ही साथ देखा कि जो किसान खेती बाड़ी करो थीन ओकर में साग सब्जी और इस खेती करो थीन तो ओकर लिए भी पानी के जमाव जो है वो ज़रूरी हुए। जब हम इनके कुआँ में तालाब में डैम में पानी जमा होते तब भी हम आसानी से जो है सिंचाई ओकर में कर सको ही है। और एकर में ये भी है कि नियमित जो बारिश वो है तो नियमित बारिश जो हो रहा है ओकर भी हमें संरक्षण करके जमा करके अपन सिंचाई खातिर या गुरु डंगर के पिलावे खातिर से भी हमें ओकर इस्तेमाल कर सको ही है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण बनाए रखे के लिए भी जल संचय वो ज़रूरी हो वो है, आवश्यक हो वो है। नदी झील तालाब और अन्य जल स्रोत पर्यावरण के महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सा है। अगर पानी संरक्षण ना करिए, हम इन पानी के जमाव ना करिए, पानी जमा ना करिए तो देखा कि पर्यावरण पर भी एकर जो है प्रभाव पड़ो है। और यह वजह है कि देखा कि दिन ब दिन जो है जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, एकर वजह एक ये भी है कि पानी की किल्लत। साथ ही साथ देखा कि जन संरक्षण से जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन जो है वो बनल रहो है। अगर जल संचय हम इन करिए, जल के संरक्षण करिए तो एकर से जो कहा है कि प्राकृतिक जो संतुलन है वो बनल रहो है। यदि अगर आजकल के संरक्षण अगर आज जल पानी के संरक्षण हम न करिए तो आवे वाला पीढ़ी जो है गंभीर जल संकट के सामना जो है एकर से करो पड़ते थे। यानी एकर कह के मतलब ये है कि अगर हम इन आज पानी संरक्षण ना करिए तो जो हम इनके आवे वाला पीढ़ी हथिन तो वो जो है जल संकट की जो समस्या है ओकर से जो है वो परेशान होते जूझथिन। पानी के हम पानी जमा करे के हम कौन तरीका जो इस्तेमाल करिए कि पानी हम इनके संरक्षण हुए, पानी हम इनके जमा हुए, तो एकर में सबसे पहला बात यह है कि वर्षा जल संचयन जो बारिश हुआ है बारिश के पानी के हम इन जो है वो जमा कर सको ये। साथ ही साथ नल के जो है हो कहे कि देखा कि हम इनके घर में जो चेंगा चूटिया हथिन वो नल के खोल जाते हैं, पानी जो है वो बर्बाद होते रहो है। तो पानी के बचाव के तरीका ये भी है कि जितना पानी के हम इनकी ज़रूरत हुए वो हम इन उतने नल खोलिए और फिर जो है तुरंत नल बंद कर दिए तो एकर से भी जल संचय हम इन कर सको ही है। जल
कि ज़रूरत के अनुसार जो है इस्तेमाल करे के। मान लिया कि अब देखा कि भाई हमें गांव के जो महिला थीन कपड़ा जो है धोवो थीन या घर द्वार जो साफ उफ करो थीन, पानी के एकदम अलहेला जो है पानी बहावो थीन, अथाह पानी बहावो थीन, जहाँ अगर तोरा एक बाल्टी की ज़रूरत हो वहाँ में 3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी जो है खर्चा करो थीन, तो एकर से भी हम इनके बचना चाहिए कि देखे कि आवे वाला दिन में जो है जल संकट से हमें जो है बुरी तरह जूझ है और जो संकट है संकट के सामना हम इनके करो पड़ते हैं। तो अभी से हम इनके पानी के बचावे के तरीका जो है उपाय ढूंढे के चाहिए कि कैसे हम इन पानी के बचाव बचा सको। ये जहाँ अगर हमारा एक बाल्टी की ज़रूरत हो कोशिश करें कि जो है एक बाल्टी के अंदर जो हम अपन जो है काम वो कर लिए। साथ ही साथ देखा कि तालाब और जलाशय का के जो है संरक्षण करे चाहिए, तालाब बनवा कर भी और जलाशय जो हुए है जो पानी के जो स्रोत हुए है ओकर जो है हिफाजत करे चाहिए, ओकर सुरक्षा भी हम इनके दायित्व है। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगावे चाहिए ताकि पानी का जो लेयर है वो बनल रहे। देखा क्या तेज़ी से जो है पेड़ पौधों की जो कटाई हो रही है ओकर से कहा कि जल जो स्रोत है जल के जो स्तर है पानी के वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहे है। और यही वजह है कि ख़ासकर गर्मी के मौसम में देखा कि हम इन पानी की समस्या जो है से परेशान रही है। तो हम इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधा लगावे के चाहिए, जल प्रदूषण के रोके के चाहिए। जो जल प्रदूषण हुआ है जहाँ पे जैसे कि जहाँ पानी जमा हो गलो गंदगी हो गलो तो कोशिश करे कि चाहिए कि वो गंदगी जो है वहाँ ना पहुँचे, पानी का साफ़ सुथरा रखे के चाहिए। तो ये तो हो गए भाई जल संरक्षण के बाद कि पानी के हम कैसे संरक्षण करिए पानी के कैसे बचाइए। अगर ये तरीका से हमें अपन पानी के बचावो ये जो बारिश हो रहा है नियमित तौर पे जो बारिश हो रहा है तो ओकर हमें जो है संरक्षण करके ओकर संचय हमें कर सकोइए जमा कर सकोइए ताकि हमें के भी साफ सुथरा पानी के पानी पिए के मिले और साथ साथ हमें के जो गोरु डांगा रहतीन तो वह सबके जो है पानी शुद्ध पानी जो है पिए खातिर जो है वो मिले। अब चला थोड़ा सा बात कर लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय में जो है आम आदमी के लिए का जो है भागीदारी होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण पर। लेकिन एकर से पहले ज़रूरी संदेश सुनो ही और कुछ गीत संगीत के भी मजा लीजिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी हम जो है गीत संगीत और जरूरी संदेश के मजा उठे लिए, सुन लिए। अब चलो ये कि पर्यावरण संरक्षण जो है आज के समय में जो है कितना ज़रूरी है, और आम जन जो है अपन पर्यावरण संरक्षण की भागीदारी संरक्षण में जो है अपन कितना भागीदारी वो सब दे सको थीन। तो सबसे पहले तो ये कि आज हर व्यक्ति के पर्यावरण संरक्षण में अपन जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभावे चाहिए। देखा कि पर्यावरण अगर हम इन बचेबे तो ओकर से हम इनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है, खेती बाड़ी पर भी अच्छा असर पड़ता है, जल पर भी हम इनके जो है ओकर अच्छा असर होते हैं, और पूरा वातावरण जो है स्वच्छ और जो है साफ सुथरा होते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि पर्यावरण जो है हम इन कैसे साफ सुथरा जो है रखिए। तो एकर में यह कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार दो प्रयास करिए रहा है, आम जन के भी एकर में जो है कुछ तरीका है एकर अपना कर जो है पर्यावरण संरक्षण के हम इन बना सको ये बढ़िया। सबसे पहले तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और ओकर देखभाल भी करना है। होगा ये कि हम इन पेड़ पौधा तो लगा दीजिए लेकिन ओकर में सही समय पर सिंचाई या पानी जो है जब देवे की जरूरत पड़े तो पानी ना दे, जकर से पेड़ पौधा जो है मर जाती। तो हम इन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधा जो है लगाइए। जल के संरक्षण करना और बारिश के पानी जे हो रहा ओकरा जो है कैसे हम इन जमा करिए एकर पर भी हम इनके विशेष ध्यान देवे के चाहिए। जे पानी बारिश हो रहा है जब बारिश से जब होवो है तो बारिश के जब पानी बह जाए बेहतरी, तो वो पानी के हम इन कैसे जमा करिए, डोभा बना के, गड्ढा बना के, या बड़ा बड़ा जो है तालाब बना के भी हम इन पानी के जो है संरक्षण जो है कर सको। ये क्या कि देखा कि अभी जो है बारिश हो रहा है, अनियमित बारिश हो रहा है, कभी बारिश हुआ है कभी बारिश ना हुआ है, तो जो भी बारिश हुआ है तो ओकर हम इन संरक्षण जो है करके अपन जो है पर्यावरण है ओकर जो है स्वस्थ और साफ सुथरा रख सको। ये साथ ही साथ देखा कि प्लास्टिक का के उपयोग जो है वो हम इनके कम करे चाहिए। आजकल हो कि कुछ भी हम इन जो है ले तो प्लास्टिक में ले, और प्लास्टिक जो है हम इनके मालूम होना चाहिए, खासकर जो हम इन के भाई बहन थी ग्रामीण या जो किसान भाई बहन थी, तो गांव के आदमी जो है प्लास्टिक के इस्तेमाल पोलिथीन के इस्तेमाल जो ज़्यादा करो थी, और वो पोलिथीन जो है वो गलो ना है, तो अगर ज़मीन में कोई गाड़ भी दे ला तो भी वो जो है वो मिट्टी के साथ जो है घुलो ना है, और वैसे के वैसे जो है वो थोड़ा सही साल साबित मिलता। तो कोशिश तो ये करे चाहिए कि जो प्लास्टिक है प्लास्टिक के इस्तेमाल जो है कम से कम करे चाहिए, ओकर जगह जो है हम इन कागज़ के बनल ठोंगा के इस्तेमाल कर सको ये, या फिर जे कपड़ा का वो है ओकर इस्तेमाल हम इन कर सको ये, जे जल्दी घुले वाला हो जे नष्ट होए वाला हो वैसन चीज़ का हम इन इस्तेमाल करिए, तो हम इनके जो पर्यावरण भी सुरक्षित रहते और बढ़िया रहते। साथ ही साथ कचरे की जो है जहाँ जहाँ में जहाँ तहाँ कचरा फेंक दीजिए वो उचित स्थान पर फेंके चाहिए, जहाँ पे कचरा फेंके के जगह बनल है कोशिश ये करे के चाहिए हम इनके कचरा होमे के फेंके चाहिए। घर में भी देखा कि जो है जहाँ तहाँ हम इनके चेंगा चुटिया कचरा उचरा फेंक देथिन, इन्हें खा के उन्हें सब फेंक देथिन, तो ओकर एक डस्टबिन रखे चाहिए, और डस्टबिन में जो भी कचरा हो चाहे वो रसोई घर के हो सामान हो या फिर और जो बाहर से भी कुछ सामान आ हुआ है खाए पिए खातिर और कुछ, तो वो सब जो है डस्टबिन में रखे चाहिए, और वो डस्टबिन भी जो है वो ढक्कन वाला हो ताकि वहाँ से जो है कुछ मक्खी वाला जो है बैठे नहीं और वो ना बैठे और गंदगी ना फैलावे। साथ ही साथ देखा कि ये बात भी हम इनके जानना ज़रूरी हो जाए कि पर्यावरण से संबंधित जागरूकता भी फैलाना चाहिए। अगर हम मान लिए सतर्क किए हम जागरूक किए पर्यावरण के प्रति जो है, तो अपन समाज में अपन घर में अपन पड़ोस में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है मां जागरूकता भी फैलाना जो है ये जरूरी हुआ है, ताकि जानकारी से भी जानकारी जो है हुआ है। ऊर्जा की बचत जो है कैसे करना है, साथ ही साथ पर्यावरण से संरक्षण या पर्यावरण की संरक्षण भी हमें जो है कर सकोगे। तो ये तो हल है कि पर्यावरण संरक्षण करके हम अपन जो है जीवन शैली के भी और अपन स्वच्छता जो है कैसे बरकरार रखिए। अगर ये छोट छोट बात पर किसान भाई बहन अगर ध्यान देते तो देखा कि हम इनके जो पर्यावरण जो आज प्रदूषित हो रहा है एकर से हमें जो है बचा सको ही अपन पर्यावरण के। देखा कि बहुत सारी चीज़ जो हुआ है कि अज्ञानता में ना इल्मी में जानकारी के अभाव की वजह से हमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान ना देव हुई है और बहुत सारा ऐसा काम कर जाइए जेकर से हमें के पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हुए है। तो ये अगर हमें छोट छोट बात के अगर हमें ध्यान दबे तो हमें के जो पर्यावरण हमें के सुरक्षित रखे में अपन अहम भूमिका जो हमें निभा सकोगे। तो भाई किसान भाई बहन देखा कि ये हल है पर्यावरण संरक्षण पर बातचीत। हमारा उम्मीद है कि हम जो किसान भाई बहन हम इनके अपन कार्यक्रम जो सुन लिया थे पर्यावरण के संरक्षण पर जो है विशेष ध्यान देते थे। और अब किसान भाई बहन के लिए एक जरूरी जानकारी लान ले है कि भाई एक महिला किसान आती हैं संगीता देवी, तो ये इनसे आज हम किसान भाई बहन के सुनेबे कि हरी मिर्च की खेती जो है वो कैसे करो थीन और अपन क्षेत्र में जो है ये क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त करथिन है। तो ये असफलता की कहानी खुद सुनिए संगीता देवी की जबानी। तो सुनल जाइए बातचीत।
2: आज हम कुंदरू कला पंचायत के लोधमा आए हुए हैं और हमारे सामने एक कर्मठ जुझारू महिला किसान संगीता देवी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि बरसाती खेती जो है वो कैसे करती हैं। अभी ये खेत की तैयारी कर रही हैं और उसमें मिर्च और ओल लगाने का इनका प्लान है, साथ ही साथ मक्का की भी बड़े पैमाने पर खेती करेंगी और ओल की जो है इन्होंने खेती की ही है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि बरसाती खेती जो है, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण ये खेती है बरसात के मौसम में, इसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दें।
3: नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संगीता देवी है, मैं ग्राम लोधमा की रहने वाली हूँ और मेरा जिला है रामगढ़। मेरी पढ़ाई है इंटर पास और हम किसान का ही बेटी हैं। किसान ऐसे खेती नहीं कर पाते थे और नहीं जानते थे कि खेती किस तरह किया जाता है, हमको जानकारी नहीं था। उसके बाद मेरा जब शादी हो गया उसके बाद यहाँ आए तो ससुराल में यहीं से हमको सारा खेती बाड़ी के बारे जानकारी हुआ और यहाँ भी किसी तरह खेती कर लेता था, पहले का जैसा तैसा करके खेती कर लेते थे लेकिन उतना ज्यादा मुनाफा हम लोग को नहीं हो पाता।
2: आप किसी महिला समूह से भी आप जुड़ी हुई हैं?
3: हाँ, मेरा समूह का नाम है आदर्श आजीविका महिला समूह। इसमें ऐसा जुड़ के हमको बहुत सारी जानकारी मिली, मेरा प्रशिक्षण हुआ इसके माध्यम से, महिला ग्रुप के माध्यम से हमको बहुत बार प्रशिक्षण कृषि के बारे प्रशिक्षण दिया गया, जिसके उस समय से हम के कृषि के लिए जानकारी प्राप्त हुआ, उसी तरह जानकारी ले करके हम अपना खेतीबाड़ी शुरू किए हैं। पहले तो उतना जानकारी नहीं था कि खेती कैसे किया जाता है, हम तो कोड़ी चलाने तक का भी हमको ज्ञान नहीं था, कहे कि मेरी पढ़ाई बाहर में ही कर रही थी, रांची से आगे उधर मांडर ब्राम्बे मेरे जी। हाँ, उधर मेरे बड़े पापा ही पढ़ाई लिखाई करवाए हैं, इसीलिए मेरे को जानकारी नहीं था कि खेती कैसे किया जाता है। जब शादी हो गई तो हमको तो अपना आजीविका के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, अपने सास ससुर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
2: आपका परिवार आपके इस काम में कितना साथ देता है?
3: इस कृषि कार्य में हमको मेरा ससुर जी, मेरा परिवार सब कोई बहुत सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन मेरा ससुर और सास भी ज्यादा बूढ़ा होने के कारण हम अकेले इतना खेती कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो अभी बाहर में रहते हैं लेकिन हम इतना हौसला रखते हैं, इतना हिम्मत रखते हैं कि हम खेती करेंगे तो करेंगे। खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, एक समय ऐसा भी होगा कि खेती नहीं करने से आदमी कितनों कमा ले, कितनों बड़ा बिजनेसमैन हो के, लेकिन खेती के बिना सब अधूरा है।
2: ये पूरा एरिया जो है लगभग कितना एकड़ में होगा?
3: ये 9 एकड़ का जमीन है जी। जैसे हम 1 एकड़ में पूरा अरहर लगा देते हैं, जो कि अपना घर के लिए भी खाने के लिए हो जाता है और इसको हम बेचते भी हैं, उससे भी मेरा इनकम आता है। और हम 50 डिसमिल में हर बरसात में 50 डिसमिल में मेरा करेला रहता है, 1 एकड़ में हम ये खीरा रहता है, फिर इधर 30-40 डिसमिल में मेरा ये मिर्चा लगाते हैं। से हमको बहुत सारी जानकारी मिली है, इसी के माध्यम से हमको शिक्षा मिला कि चलो इस तरह का खेती करना चाहिए। जो छूट रहा है उसको हम लोग लाने का काम करेंगे। जिस तरह जैसे कि पहले खाद उद से ही गोबर खाद से ही खेती होता था
2: जी।
3: उसी तरह हम लोग पहले का ही कैसे नहीं होगा, इतना दवा कर लगाता है आदमी आजकल किसान
2: जी।
3: कमाने के लिए बहुत सारा दवा यूज करता है, लेकिन वो दवा से किसको नुकसान होता है? हम ही लोग को नुकसान होता है। इस सब बारे हमको बहुत अच्छा तरह से जानकारी मिला महिला JSLPS के माध्यम से भी, और कृषि विज्ञान रामगढ़ से भी हमको जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिला।
2: अभी आपके पास जुताई का क्या साधन है?
3: मेरे पास अभी पावर टिलर है जो हमको JSLPS के माध्यम से मिला है, और एक पावर टिलर है जो हमको कृषि विज्ञान केंद्र तरफ से मिला है, फिर ग्रास कटर है फोर स्टॉक वाला। अच्छा। एक धान झाड़ने वाला मशीन मिला और पावर टिलर मिला, उसके बाद ये भिलियस मशीन एक मिला और पंप सेट मिला। इतना सामान हमको उधर से मिला कि बहुत ऐसा ही है कि हमको बहुत जगह सम्मानित किया गया है कृषि के लिए, इस एक सशक्त किसान के लिए हमको इसमें रांची में भी हमको ये अवार्ड मिला था।
2: अभी आप मिर्च की खेती के लिए आप जमीन जो है वो पूरा तैयार कर चुके हैं, पावर टिलर के माध्यम से जो है आप इसकी जुताई भी कर चुके हैं, तो इसमें अभी आप ऊपर में से प्लास्टिक लगाइएगा ताकि घास फूस ना हो।
3: हाँ।
2: इसके लिए आपने नर्सरी तक कर ली है?
3: हाँ, कर लिए हैं नर्सरी। ऐसे मिर्चा की खेती के लिए हम नर्सरी कर रहे हैं, जैसे कि अगर पहले जल्दी आप फसल निकालिएगा तो रेट अच्छा मिलता है, रेट अच्छा मिलने से इनकम भी अच्छा होता है। इसी कारण आप रहते रहते और किसान ये खेती करते करते बहुत ऐसा नॉलेज हो गया कि किस समय हम लोग खेती करें कि सही मुनाफा हो, सही दाम मिले।
2: अभी आप मिर्च की कौन सी किस्म लगाएंगे?
3: हम मिर्चा की खेती में भिनार का ये लगाते हैं, इसमें जो है कि फसल भी अच्छा होता है और इसका फल जो होता है बहुत अच्छा रहता है, हर चीज फलता भी है, तो बहुत ज्यादा करके एक पौधा में हम लोग 3-4 किलो तक, ऐसा 5 किलो तक निकल जाता है एक पौधा में। और मेरा पौधा एक बारी में ऐसा खेत में लगता है, उसमें 2500 तक पौधा लग जाता है एक बारी में।
2: कम करते हैं
3: रासायनिक खाद का उपयोग, हम बहुत ही कम करते हैं, इसलिए मेरा लागत भी कम लगता है इसमें। जैसे कि रासायनिक खाद डालिएगा तो एक वो सीसी लेने जाएगा 500 रुपया पड़ेगा, और जैसे जैसे बारिश भी होता है तो घास उस जितना रहेगा उतना कीड़ा लगने का संभावना रहता है। तो इसमें हम लोग का बहुत ऐसा खाद बताया गया है जिसको हम लोग डालते हैं, जब नहीं है ये होने लगता है तो लास्ट में थोड़ा बहुत आधा से कम में हम लोग ऐसा डालते हैं, नहीं के बराबर नर्सरी कर लेते हैं, उसके बाद नर्सरी करके ही हम बीजा डालते हैं।
2: इसके अलावा भी आप क्या क्या करते हैं खेती के अलावा?
3: खेती के अलावा मैं मुर्गी पालन भी करते हैं, पशु पालन भी करते हैं, और इसके अलावा हम समूह में एकेएम का काम करते हैं, कृषि सखी का काम।
2: अच्छा।
3: कृषि सखी है तो मेरे अंदर अभी 60 किसान है।
2: अच्छा।
3: तो सभी किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं किस तरह खेती करिएगा दीदी, कैसे खेती करिएगा कि ताकि आपको कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सके।
2: यानी आप ट्रेनर
3: पर पानी का सुविधा हो वैसे जगह में, तो जहाँ परती पड़ा हुआ है वहाँ हम लोग परती क्यों रहने दें?
2: यानी जागरूकता की कमी देखी जाती है महिलाओं में, खासकर वो महिलाएं जो हिम्मत नहीं करती हैं, अपने आप को घर से बाहर नहीं निकालना चाहती हैं। आखिर में कुछ हमारी महिला से जो कृषक है उनके लिए कुछ संदेश?
3: ऐसे महिला किसान है वो दीदी को सारे चीज हौसला को कभी मतलब कमजोर और ये नहीं होने देना चाहिए, अपने आप को हिम्मत और कर्मठ बना के रखना, तो इसी तरह अपने आप को हिम्मत रखना चाहिए। हम तो कभी काम नहीं किए थे, लेकिन अपने आप को कभी नहीं ये होने दिए कि हम वो काम नहीं सकेंगे। हम कैसे नहीं सकेंगे, करके रहेंगे तो कैसे नहीं कर पाएंगे, उसको कोशिश करते रहेंगे तो हर कोशिश को जारी अपना रखेगा तो कभी नहीं बोल ये हिम्मत नहीं हारेगा कि हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहे तो हर चीज कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। ये नारी जाति ऐसा ये है कि वो हर काम को कर सकती है,
2: जिस हाथ जिस काम में वो हाथ लगा हाथ देगी लगा वो देगी। काम जो है उसमें सफलता उनको जो है जरूर हाथ आती है।
3: यही करके भी हम लोग को सलाह दिया और आके भी दिखा के हम लोग को सिखाया, तब हम इतना दूर तक आगे बढ़ पाए हैं। और हम अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि आगे भी और कुछ करे कि ताकि हम और आगे महिलाओं को भी और अच्छा जानकारी दे पाए, ताकि किस मेरे साथ भी जितना नीचे दीदी लोग है वो अब भी आगे बढ़े। और अभी ऐसा भी दीदी है जो जिसको बताए हैं और कर चुकी है, जैसे खाद के भी बारे हम बताते हैं
2: जी।
3: तो खाद के बारे बताते हैं, उन लोग का रिजल्ट आता है अच्छा, तो बोलते सही बोलती है दीदी। ये सब हम लोग अपने मन से अपना मन कहो ये सब का करते रहेंगे, इतना इतना सामान का कूट छेज के इतना ही गलाते रहेंगे, डायरेक्ट दवा ला के देंगे, लेकिन वो सबको हम छुड़ा रहे हैं धीरे धीरे। अपनी दीदी लोग को खाद बनाते हैं डालते हैं, हमको नहीं देते हैं ऐसे करने लगी, तो हम बोले यही चीज तो आप लोग, तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं।
2: तो ये थी संगीता देवी जो हमारे महिला किसान को और किसानों को जो है इतनी अच्छी जानकारी दे रही थी, अपना अनुभव जो है वो उन्होंने शेयर किया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो ये थी संगीता देवी जो हरी मिर्च की खेती और अपना अनुभव जो है शेयर साझा कर रही थी। इसी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से मुझे नसीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल देर रात बिजली गुल रहने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में डीजल की कमी के कारण जनरेटर नहीं चल सका, जिससे डॉक्टरों और नर्सों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज व सुई देनी पड़ी। जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की। लोहरदगा में झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त और डीडीसी को ज्ञापन सौंपकर दंडात्मक कार्रवाई के बजाय संवाद से समाधान की अपील की है। मनरेगा कर्मी रेट पे आधारित मानदेय और स्थायीकरण जैसी मांगों को लेकर पिछले 76 दिनों से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तरी कोयला परियोजना के विस्थापित परिवार के पुनर्वास कार्य में तेजी लाई गई है। अपर समाहर्ता विकास कुमार राय ने मंडल डैम निर्माण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थलों पर बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भावुनिया ने आज मोहनपुर प्रखंड अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने के निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और खराब चापाकलों की मरम्मत में तेजी लाने को कहा। हजारीबाग के कटकम दाग में दो नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं लीजिए पेश है युवा साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवा।

युवानी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को सूरज का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, जीवन वास्तव में नियमों के अधीन है। हर छोटे बड़े कार्य को करने के लिए नियम निर्धारित है, ये तो हम सभी जानते हैं। सुबह जो हम सोकर उठते हैं, ये सोने की भी बात करें हम तो सोने का भी एक नियम है। तो जो चीज़ें या कहें कार्य नियमपूर्वक होते हैं वो कार्य ही सही तरह से पूर्ण होता है, उसी कार्य में हमें सफलता भी मिलती है। यहाँ तक कि हमारी सोचने के लिए भी नियम है। हम सही सोच रहे हैं या सही तरीके से सोच रहे हैं या नहीं, इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे परिवेश के ऊपर, हमारे कहे के वातावरण पर पड़ता है। कहते हैं ना कि सोच बड़ी चीज है। किसी भी कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। जानते हैं कि जब किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं उससे पहले वो सारी चीजें हमारी सोच में होती हैं। सफलता का और असफलता का कारण भी वास्तव में यही है, लेकिन एक कारण और है, वो अच्छा साथ। कहे कि हम अच्छे साथ की वजह से व्यक्ति रास्ते नहीं भटकता है। पिछले 90 वर्ष से युवा साथियों को आकाशवाणी ने बहुत साथ दिया है, ये तो हम सभी जानते हैं। युवाओं के प्रतिभा प्रदर्शन की दृष्टि से चर्चा करें तो कार्यक्रमों की एक लंबी सूची दिखाई देती है, चाहे बात युववाणी की हो, वार्ताओं की हो, कलात्मक मंच की हो, काव्यात्मक मंच की हो। युवाओं ने अपनी उपस्थिति बहुत ही दमदार तरीके से दर्ज की और आकाशवाणी ने उन्हें अवसर दिया है। अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करके न सिर्फ इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है बल्कि अपनी पहचान भी बनाई है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं युवा कृषकों के बारे में। युवा किसान के रूप में कहें कि किसानवाणी, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास के दूसरे सभी कार्यक्रमों में युवाओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, दुनिया के समक्ष अपनी कौशल प्रतिभा को, अपनी कुशलता को रखा है। और कई किसान या कहें युवा किसान ऐसे हैं जो यह कहते नहीं थकते हैं कि उन्हें आकाशवाणी ने अवसर दिया है, वहीं से उन्होंने सीखा है और अपने जीवन में तरक्की की है। और सीखने सिखाने का

जो उपलब्धियों को साझा किया है, उन्हें बहुत सारी तकनीकी जानकारी के कार्यक्रमों के माध्यम से दी है तो आकाशवाणी ने दी है, और ये कहें कि कौशल प्रदर्शन का एक सशक्त माध्यम भी बना है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं आज साइकिल की। भाई आप जानते हैं कि विश्व साइकिल दिवस भी है, और कह सकते हैं कि साइकिल पहली सवारी है। थोड़ा हम आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहते हैं। आप जब बचपन में होंगे तो एक बड़ी प्रबल इच्छा होती है, जब बच्चा अपने पैर पर चलने लगता है तो उसकी प्रबल इच्छा होती है कि वो साइकिल चलाए, और साइकिल उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। और साइकिल ऐसे भी हर किसी की पहली सवारी रही है, और एक वक्त था जो साइकिल ही सवारी मानी जाती थी, और साइकिल का होना बड़े गर्व और प्रतिष्ठा की बात होती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, बहुत सारी चीज़ें आईं, सार्वजनिक परिवहन की चीज़ें आईं, और जो निजी प्रयोग में आने वाली बहुत सारी चीज़ें आईं, मोपेड है, फिर बाइक है, फिर दूसरी चीज़ें आईं, फिर ईवी का दौर आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आया, तो बहुत सारी चीज़ें बदली। लेकिन इन सब के बीच जो नहीं बदला वो साइकिल का अपना महत्व। आज भी लोग, बहुत सारे लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। साइकिल एक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि साइकिल प्रदूषण नहीं फैलाता है, और इसके अलावा इसका रख रखाव दूसरे सभी दोपहिया वाहनों से ज़्यादा आसान होता है। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं उससे अच्छा साइकिलिंग करना लोग पसंद करते हैं। तो बहुत सारे, ढेर सारे फायदे हैं, और भी चर्चा करेंगे। बहरहाल इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए देते हैं विराम, एक खूबसूरत गीत के साथ आगे के इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, और कुछ और जानकारी, कुछ और बातें आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आए, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल खूबसूरत से गीत का हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए,
2: वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तकनीक का युग है और तकनीक का बदलता युग है। कई तरह की तकनीकों को बदलते हुए हम सभी देख रहे हैं, तो आज इसी विषय पर, तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की भूमिका विषय पर संतोष कुमार सिंह से ली गई एक भेंट वार्ता आपको सुनवा रहे हैं। इनसे बातचीत की है अशोक कुमार ने।

0: आविष्कार हुआ था तो लोग समझते थे पता नहीं इसमें काम करना आसान होगा या कठिन होगा, है ना। तो लगा कि मैनुअल से सीधे वो कंप्यूटर की ओर जा रहे थे तो लग रहा था कि जो है तो बहुत टफ है, बहुत दिक्कत है, लेकिन जब उस कंप्यूटर से काम करना शुरू किया तो लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा है। जहाँ बहुत सारे ढेर सारे हिसाब किताब रखने पड़ते थे, है ना, कागज, ये सारा आप कंप्यूटर में आपका सेव रहता है, एक क्लिक के साथ सारा सब कुछ आप देख
1: सब कुछ मिल जाता है,
0: सब कुछ मिल जाता है जी। तो बहुत ही आसान है। तो अभी क्या है कि तकनीक में परिवर्तन आ रहा है, बदलते ही होंगे, तो कंप्यूटर जाहिर से बात है पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो क्या क्या संभावनाएं हैं कि और बदलाव हो रहा है, किस बदलाव और उसको किस प्रकार से जो है एडजस्टमेंट हमारे साथ होगा जी, इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से।
1: एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर, हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो एक बात आती थी कि कंप्यूटर का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, प्रयोग कहाँ कहाँ है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कंप्यूटर के बगैर किया जा सकता हो
0: जी, बिल्कुल सही। हाँ,

0: आज इसका हर चीज में उपयोग है, हर चीज में इसका एप्लीकेशन है। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे आविष्कार, मीन्स जो हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर का प्रयोग है बदलते तकनीकी युग में या टेक्नोलॉजी युग में, तो हम लोग कहें कि ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि ऐसे नौ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं जिसने दुनिया के पूरे परिदृश्य को बदल करके रख दिया। जैसे हम लोग सुनने के लिए सुनते हैं कि सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि टेलीफोन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस हुआ, इसके बाद स्टीम इंजन हुआ, बल्ब हुआ, एरोप्लेन हुआ, इसी कड़ी में एक कंप्यूटर आया। ठीक है, तो कंप्यूटर जब आया तो उस समय लगा था कि ये एक अलग फील्ड है। जैसे हम लोग बात करते थे कि ये भौतिकी का, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है, ये रसायन विज्ञान का क्षेत्र है, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो लगा कंप्यूटर विज्ञान एक अलग क्षेत्र है। लेकिन आज के समय में आप देखिए तो शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जो रिसेंट समय चल रहा है जिसमें कि कंप्यूटर में एक और एडवांस स्टेज में जा करके जो हम लोग आए दिन सुनते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो ऐसा किया कि कंप्यूटर के पूरे, मतलब कंप्यूटर के द्वारा पूरे दुनिया के परिदृश्य को ही बदल दिया।
1: सही है,
0: मतलब मनुष्य की जो हम लोग बोलते थे कि मनुष्य का एक अपनी जो कृत्रिम बौद्धिकता जो हम लोग बात करते हैं कि उसका अपना इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर ने एक टर्म उसमें आर्टिफिशियल ऐड करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के उस बौद्धिक क्षमता को भी खुद से एनालाइज करने लगा, खुद से बनाने लगा, खुद से अब समझने लगा और खुद से मनुष्य को ही उसका समाधान भी देने लगा, सॉल्यूशन भी देने लगा।
1: लेकिन ये हमें चाहिए जो एआई पद्धति का यूज कर रहे हैं वो उसका उपयोग करें, बहुत को उसका दुरुपयोग भी कर देते हैं, कहां का फोटो किस तो किसको अटैचमेंट करके उसको बदनाम कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा
0: है। उसमें क्या है कि हर चीज का ना, जैसे हर टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी आइंस्टाइन ने मान लीजिए कि एटम को दिया था, न्यूक्लियर एनर्जी को दिया था, तो ये सोच थी कि एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया को इतनी ऊर्जा देगी कि बिजली की कमी, ये सारी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, ठीक है, जो पूरा विनाश का कारण हो सकता है। ठीक उसी तरह एआई का बहुत उपयोग है अगर उसको रचनात्मक तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर यूज किया जाए तो यूज है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से लोग सोचने लगे तब तो उसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं आज यहाँ हजारीबाग में, ठीक है, और आपको एआई के थ्रू क्या, अभी आपका फोटो, आपका वीडियो बना दिया कि नहीं, तो व्यक्ति जो है थे और ये काम कर रहे थे,
1: यही दुरुपयोग,
0: ये उसका दुरुपयोग है। किसी के भी फोटो को मॉर्फ कर लेना, व्यक्ति नहीं है उसको वहां पे प्रेजेंट कर देना, जो व्यक्ति नहीं कुछ कर रहा है उसको उस चीज में इन्वॉल्व करके दिखा देना, कुछ दुरुपयोग है। लेकिन अगर इसका रचनात्मक तरीके से यूज किया जाए तो एआई वरदान साबित हो सकता है समाज के विकास में, देश के विकास में और पूरे विश्व के विकास में।
1: अच्छा, एआई की तो बात हो गई, अब कुछ और भी ऐसा तकनीक, ऐसा लगता है कि कुछ और भी आने वाले हैं एआई के अलावा, या फिर प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में
0: क्या है? जैसे हम लोग प्रेजेंट देख रहे हैं
1: एआई, अभी
0: एआई बहुत सारे स्टेज है।
1: हाँ,
0: एआई अभी चूंकि हम लोग एक बेसिक वे में कहें, अगर बहुत डीप में नहीं जाते हैं तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि एआई का बहुत सारा जो अलग अलग स्टेज से गुजर रहा है उसमें अभी जो है हम लोग एआई के बेसिक्स पे हैं जिसका यूज किया जा रहा है। अभी आया है जैसे जेनरेटिव एआई, जेन एआई की बात है, मतलब वो क्या है कि खुद आप, मतलब आपको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, वो आप ही के द्वारा दिए गए डेटा से या आपके द्वारा किए गए कार्य से वो खुद से खुद को ट्रेन कर रहा है, आप नहीं ट्रेन कर रहे उसको। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज सिस्टम पे, इंटरनेट पर आप बैठे, जैसे कंप्यूटर के बाद जब इंटरनेट आया 1969 में, पीसी आया, पर्सनल कंप्यूटर की बात आई, पर्सनल कंप्यूटर के बाद जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते 1969 में पहला नेटवर्क बना अर्पानेट, उसके बाद जब इंटरनेट का विकास हुआ लार्ज स्केल पर, ठीक है, तो इंटरनेट के यूज से क्या हुआ, आज भी हम लोग बैठते हैं, जैसे आप सिंपल सोचिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब पे कुछ ऑर्डर करते हैं, आपने जो चीज ऑर्डर किया, जिस चीज को देखा, नेक्स्ट टाइम से जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे उसी तरह की चीजें आपके सामने आना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। ठीक है,
1: ये तो प्रचलन है,
0: ये तो आप नहीं खोजे फिर।
1: हाँ,
0: ठीक है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो समझा कि ये व्यक्ति इन चीजों को लाइक करते हैं तो इनको इस तरह का चीज दिखाया जाए।
1: जैसे एक छोटे से अपने डिवाइस पर भी किसी चीज को सर्च कर रहे हैं,
0: सर्च कर रहे हैं,
1: एक बार आपने खाने का कोई रेसिपी अपने
0: देखिए उसका खुशी से रिलेटेड,
1: फिर उसी से रिलेटेड सारा आ गया, एक बार आपने किसी रोग से संबंधित किया फिर उसी रोग से संबंधित सारे आ गए।
0: अभी का जो सिचुएशन है, आप अगर स्मार्टफोन लेकर के बैठे हैं तो आप नहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं ना आपस में अपने मित्र के साथ, अपने परिवार में,
1: तो उसको भी
0: घर में, उसको भी वो सुन रहा है। और जैसे ही नेक्स्ट आप खोलेंगे कोई वैसा साइट, ठीक है, आप फेसबुक पर जाइए तो देखिएगा कि उसी से रिलेटेड चीजें आपके सामने आना प्रारंभ हो गया। तो हम लोग को लग रहा है कि अरे मोबाइल तो मेरा बस, अभी हम बात थोड़े ही कर रहे हैं या हम इस पे सर्च थोड़े कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रखे हुए हैं, बंद है,
1: लेकिन उसको वो
0: सुन रहा है हर कुछ। तो है क्या कि अभी एआई इस स्टेज, अभी एडवांस स्टेज तो बाकी है, फिर तो सोचिए कि अभी आपके द्वारा बात किए गए हर चीज को सुन करके, देख करके और खुद से खुद को ट्रेन कर रहा है, उसको ट्रेनिंग भी आप नहीं दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्रेन कर रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है, इन व्यक्ति को क्या चीज दिखाना है। मान लीजिए कोई चीज आपके सामने आ रहा था, आप उस पे ज्यादा देर नहीं रुके, आया सामने और आप उसको पास कर दिए, स्क्रॉल कर दिए, हटा दिए, एआई खुद से समझ गया कि इस व्यक्ति को इस तरह की चीजें नहीं पसंद है तो इनको ये चीज नहीं दिखाना है। कोई चीज आया आपके सामने, उस पर आप 2-4-10 सेकंड रुके, देखे, क्लिक किए, वो समझ गया वो इनको इस तरह का चीज पसंद है, इनको आगे इसी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तो यह इस स्टेज पे काम कर रहा है।
1: तो अब क्या है सर कि अभी जो है यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट पे कौन कौन से ऐसे बदलते तकनीक के समय में कौन कौन ऐसे नए कोर्सेज आरंभ हुए हैं जिसमें हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं इंटरेस्टेड है वो कोर्स को करके उसके उसके ड्यूरेशन बताएं, उसके फी बताएं, उसके करने से उनका भविष्य संवर जाएगा और आगे जाके वो बेहतर
0: विश्वविद्यालय में बहुत सारे पाठ्यक्रम को, बहुत सारे कोर्सेज को पहले से चला रहा है
1: जी,
0: लेकिन नए भी कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। प्लस क्या है कि हमेशा जैसे हमारा जो एमसीए विभाग है, एमसीए विभाग में हमारे यहाँ दो कोर्सेज जो चल रहे हैं, जैसे एक तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो AICTE अप्रूव्ड है और 2 साल का कोर्स है, ठीक है, दूसरा एक BCA कोर्स भी चल रहा है 3 इयर्स का, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, ये 3 इयर्स का है, वो भी AICTE अप्रूव्ड है।
1: अच्छा।
0: तो इसमें जो एडमिशन के लिए है, मान लीजिए कि जो बच्चे BCA, तो प्लस टू के बाद जो बच्चे आते हैं वो मैथमेटिक्स के हों या प्लस टू में कंप्यूटर साइंस रखे हों, तो वो BCA में आते हैं। BCA करने के बाद लोग MCA में जाते हैं, मास्टर्स डिग्री करते हैं। आए दिन जो चेंजेज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, इस टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण हमेशा हर साल हम लोग अपने कोर्स को भी, सिलेबस को, जो विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल है या विश्वविद्यालय का जो सिलेबस कमिटी है, वो कमिटी डिमांड को देखते हुए कि आज सोसाइटी में या देश में इंडस्ट्रियल रेस्पेक्ट से, इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव के अनुसार किस चीज का डिमांड है, किस सारे प्रोग्राम का डिमांड है या किस सॉफ्टवेयर का डिमांड है, कौन सा सॉफ्टवेयर मार्केट में नया आया है, उसके अनुसार कार्यक्रम पाठ्यक्रम को चेंज किया जाता रहा है, अपडेट किया जाता रहा है, इम्प्रूव किया जाता रहा है
1: जी। ये बहुत ही बेहतर,
0: हाँ बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उसमें उस जो कमिटी है उसमें इंडस्ट्री के भी कुछ लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि अभी मार्केट में इन चीजों का हमको डिमांड है, इनकी जरूरत है, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम को फिर से रिवाइज कर दिया जाता है।
1: सर इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्रता क्या है, जैसे
0: हाँ, जैसे
1: किसी भी संकाय के लोग आ सकते हैं,
0: किसी भी संकाय के लोग, जैसे BCA में है मान लीजिए, तो BCA में क्या है किसी भी संकाय से आए, लेकिन अभी एक रिस्ट्रिक्शन है कि प्लस टू में उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए या
1: अच्छा या फिर
0: या वो एक पेपर, जैसे प्लस टू में बच्चे रखते हैं कंप्यूटर साइंस या रखते हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मतलब कंप्यूटर का एक पेपर है, तो पेपर को रखे हो
1: जी
0: आ सकते हैं। जहां तक एमसीए में आने का प्रश्न है, तो एमसीए में कोई भी ग्रेजुएट जो 50% कम से कम मार्क्स लाया हो वो आ सकता है, लेकिन वहां भी एक कंडीशन है कि प्लस टू में मैथमेटिक्स उसका
1: होना चाहिए
0: ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हमको लगता है कि 1 सप्ताह पहले AICTE ने निर्णय लिया है, भारत सरकार का जो AICTE, जो सारे टेक्निकल जितने भी टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं देश में, उनको जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है AICTE, जिसको हम लोग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, उसने एक निर्णय लिया है इस बार को खत्म किया जाए, और वो खत्म कर रही है कि मैथमेटिक्स होना कोई जरूरी नहीं होगा।
1: अगर ऐसा हो जाए तो हाँ, बहुत बड़ी राहत की बात।
0: इसलिए हुआ क्योंकि NEP में जो कॉन्सेप्ट आया, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है 2020, उसमें आया कि कोई बच्चा मान लीजिए किसी कारण से प्लस टू में मैथ्स नहीं पढ़ पाया, मान ली नहीं पढ़ पाया, लेकिन आगे चल करके उसकी इच्छा है कि भाई हम कंप्यूटर फील्ड में या कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर बनाए, तब तो बेचारा उसके चलते मारा जा रहा है, वो आगे चाहते हुए भी इच्छा होने के साथ साथ और नॉलेज होने के साथ भी फिर भी नहीं आ पा रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, किसी बच्चे को ऐसा रोकना सही नहीं है, इसलिए नई एक पॉलिसी लेकर के आ रही है कि उनको एक छोटा सा ब्रिज कोर्स करा कर जिसमें कि आप कहते हैं कि मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो ठीक है भाई उसको कुछ दिनों का ब्रिज कोर्स करा करके और वो फिर इसमें बीसीए एमसीए में एडमिशन

0: के लिए पात्रता उसकी हो जाएगी, वो ले सकता है भले ही वो मैथमेटिक्स प्लस टू लेवल में नहीं पढ़ा हो।
1: ये कोई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। हाँ। उम्मीद करते हैं कि इस पे बहुत जल्द निर्णय हो जाएगा।
0: जी जी,
1: निर्णय हो गया कि समय थोड़ा लगेगा।
0: निर्णय उसने ले लिया है, सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है।
1: लेकिन उम्मीद है कि अगले वर्ष से ये चालू
0: हो जाएगा। एकदम हो सकता है कि नोटिफिकेशन हार्डली तो महीनों के अंदर ये नोटिफिकेशन चलाएगा, आ जाएगा।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मैथमेटिक्स नहीं था अब वो वंचित हो जाता करने से,
0: और बाद में
1: एक अच्छी खबर आपने जी जी। तो ये आपसे बातचीत करके श्रोता हमारे जरूर लाभान्वित होंगे, खुश भी होंगे कि भाई एक ऐसा अवसर आ रहा है हम लोगों के लिए।
0: हाँ,
1: तो अभी तक कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन नहीं कर पाया थे बीसीए में।
0: हाँ,
1: तो वो अब वो काफी वो कर सकते हैं, छोटा सा संक्षिप्त सा कोर्स करके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बताइएगा कि कितने वर्षों का ये कोर्स होगा? पहले भी बता चुके
0: हैं, 3 साल का कोर्स है जैसा मैंने कहा कि बीसीए 3 इयर्स।
1: अच्छा, कोई साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं उनका ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं।
0: हाँ, उनके लिए एमसीए है जो कि 2 साल का कोर्स है।
1: अच्छा जी,
0: उसको कर सकते हैं
1: मास्टर।
0: हाँ, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अदर जो छोटे कोर्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने बीच में किया था साइबर सिक्योरिटी में भी, साइबर डिफेंस में
1: बहुत,
0: और कैंपस में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का भी कोर्सेज चल रहा है।
1: अच्छा।
0: और भविष्य में ऐसा है, हमारे विभाग का भी सोच है और हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रपोजल है कि हम लोग भी कुछ नए पाठ्यक्रम, अब हमारे जो माननीय कुलपति हैं उनके सामने एक प्रस्ताव रख करके, और हम लोग भी कुछ और नए पाठ्यक्रम जिसका कि जिस डिमांड है या जिसकी जरूरत है, जिनको करने के लिए बच्चे हजारीबाग से उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो उन पाठ्यक्रमों को भी जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उसको हम लोग अपने विभाग में स्टार्ट करें।
1: बहुत तो, और इसमें फी कितना लगता है?
0: हाँ, जैसे बीसीए
1: के बारे में बताएं
0: जी,
1: और आरंभ में कितनी रकम देनी पड़ती है?
0: हाँ, जैसे
1: पार्ट टाइम लिया जाता है।
0: हाँ,
1: अगर इसके बारे में थोड़ी सी,
0: बच्चे को सहूलियतें दी गई है यहाँ कि अगर वैसा है कि बच्चे एक बार में फी जैसे नहीं दे, जैसे फी जो है वो सेमेस्टर वाइज है,
1: सेमेस्टर
0: एडमिशन जैसे बीसीए की बात,
1: दो वर्ष में कितने सेमेस्टर है? 6-6 महीने
0: के, 6-6 महीने के सेमेस्टर है। तो अगर बीसीए की बात करें तो 6 सेमेस्टर हुआ बीसीए, 6 सेमेस्टर हुआ, और एमसीए 4 सेमेस्टर का कोर्स हुआ। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बीसीए की हम लोग बात करते हैं तो उनको 20,000 देना है, 20,000।
1: बहुत अच्छा,
0: एक सेमेस्टर का फी उसमें 15,000 है और 5,000 ये सब जो एडमिशन के सारा
1: चीज
0: करके, ठीक है। उसी तरह से फिर अदर जो बाद बाकी 5 सेमेस्टर बचे उनको उसमें 15,000 रुपए देने हैं, ठीक है
1: जी।
0: और एमसीए में एडमिशन के समय जो उनको फी देना है वो नियर अबाउट 28,000 से 30,000 रुपया का है
1: जी,
0: ठीक है
1: ठीक है।
0: और पर सेमेस्टर जो फी है उनका वो 28,000
1: दिया गया।
0: हाँ, उसको बांट दिया गया,
1: तो बहुत महंगा भी नहीं है।
0: नहीं,
1: और ये एलिजिबल है,
0: मतलब इसी कोर्स को करने के लिए एमसीए और बीसीए को करने के लिए जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उनको इसी चीज में 4 से 5 लाख रुपए का खर्च,
1: सही बात,
0: मतलब सिर्फ फी
1: फी की बात है,
0: प्लस रहना खाना से खर्च, वो सारा चीज अलग है। और हमारे यहाँ के भी जो बच्चे हैं जो हम निकले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर प्लेस्ड हैं।
1: जी जी,
0: ठीक है, तो इसलिए
2: संतोष कुमार सिंह से अशोक कुमार की बातचीत कर सुन रहे थे तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की भूमिका विषय पर। और इसी के साथ देखिए कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो चुका है। तो युवाणी के आज के इस कार्यक्रम से सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आनंद उठाते हैं फिल्मों से लिए गए कुछ गीतों का कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

मैं प्रेम की दीवानी इस फिल्म में सुन रहे थे कैश चित्रा और शान को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम भी हम आपको बता दें श्रोताओं, इसे हमने लिया है फिल्म प्रेम ग्रंथ से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

बप्पी लहरी और आशा भोसले को आप सुन रहे थे प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म में। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है अजूबा।

श्रोताओं, समय अभाव के कारण हम आपको ये गीत पूरा नहीं सुनवा पाएंगे। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 होने वाले ही कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 500

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालूघाट

0: को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्यभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू, किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश, झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत को यह गौरव मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और नीलाम कोल ब्लॉकों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही राज्य में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने, नए खदानों के ऑक्शन में तेजी लाने और जेएसएमडीसी और जेएमईसीएल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
1: जब जब कांग्रेस सपोर्ट से जेएमएम की सरकार बनी है तब तक बालू गायब, बालू सोना बन गया। ये दुर्भाग्य है, क्यों? कभी बंबई के व्यापारी को बेच दिया, कभी किसी को दे दिया। और कमीशन फिक्स है, इस जो कमीशन खोरी बालू की चल रही है इसमें लाखों नहीं रोजाना करोड़ों रुपए कमीशन में जाते हैं। जांच होनी चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कोष विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों को स्थिर करेगा। इस महत्वपूर्ण फैसले से भारतीय एयरलाइंस को वित्तीय मजबूती मिलेगी और विमानन क्षेत्र से जुड़े करीब 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
2: 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में IIT, एम्स, PSU, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की ही देन है।
3: कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जितने काम किए पार्टी को उस पर गर्व है। पंडित नेहरू ने वहां पर भाखड़ा नंगा डैम बनाने की स्थापना करी थी, IIT बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, एम्स बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए थे और ललित कला अकादमी बनाई थी, तमाम तरीके की हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पे HES बनी थी, जितने PSUs थे वो सारे के सारे बनाए थे।
0: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आज नक्सल उन्मूलन और सुदूर क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार, SP अमित रेणु और CRPF DIG विनोद कार्तिक ने सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सारंडा और कोल्हान के दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा सहित राज्य भर के

0: समीक्षा की। डीआरएम ने बताया कि कांडरा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है।
1: टाइम लंबे होंगे, वेटिंग हॉल जो है वो ठीक होंगे, टॉयलेट एक्वाफिक होगा, पैसेंजर की अम्यूनिटी बनेगी, वही चीज देखने आए थे कि वो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन भी आ जाए, पार्किंग भी हो जाए और प्लेटफॉर्म में लिफ्ट भी लग जाए, पैसेंजर का वेटिंग हॉल भी अच्छा हो जाए, वो सब चीज देखने के लिए।
0: धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित एएनएम स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इन नियुक्तियों से जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
2: 100 प्लस और बहाली होना है, 120 आज हो गया, उसमें भी 20 वैकेंसी रह गया, उस वैकेंसी को फिर हम लोग भरेंगे। कुल लगभग 250 से 300 के बीच में एनएचएम में बहाली होनी है और अनदर आउटसोर्स से 300 से 400 के बीच में लोग होंगे। कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए हैं क्योंकि राज्य स्तर की नियुक्ति में कुछ लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो वो वाली वैकेंसी हम लोग मेधा सूची से भर देंगे।
0: विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में करीब 50 साइकिल चालकों ने 35 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए साइकिल चालकों ने स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और साइकिल अनुकूल शहर निर्माण का संदेश दिया। उधर सिमडेगा में भी मेरा युवा भारत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पेट्रोल बचाने का है, जिसमें साइकिल चलाकर हम सब अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
3: आज विश्व साइकिल दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी यह बताया गया है कि हम लोगों को पेट्रोल की थोड़ी सी बचत करनी है, उसको लेकर के ये आयोजन भी काफी सराहनीय रहा। सैकड़ों बच्चे बच्चियों ने बताया कि साइकिल का उपयोग यदि किया जाए तो पेट्रोल की बचत तो होगी होगी, साथ ही साथ सेहत का भी अच्छा फायदा मिल पाएगा।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने शानदार हैट्रिक जमाते हुए 3 गोल दागे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड के ही प्रेमचंद सोय ने भी 1 गोल कर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। इस हफ्ते साइको थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध

0: में खूंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया।
1: साइको थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की था, इनकी हत्या हो गई थी। उसमें हम लोगों को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा कि जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, और दो लोग और थे जिनका कि रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अब हम लोग उनको न्यायिक अवरक्षा में भेज रहे हैं।
0: खूंटी जिले में पलायन बड़ी चुनौती बन गई है। रोजगार की तलाश में हजारों महिला पुरुष हर साल दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी में लीड संस्था प्रवासी श्रमिक परियोजना के तहत स्थानीय युवतियों को काथा स्टिच का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने में जुटी है। इस संबंध में कोलकाता से आई ट्रेनर मैत्रेयी धर और प्रकाश कुमार ने बताया।
2: काफ्टा स्टिच के अलावा दूसरा स्टिच भी हम सिखाए, तो गांव के जो महिला है जो काम करने के बाद खुले टाइम बैठे रहते हैं उनको ये चीज सिखा कर अपने रोजगार का कुछ दिशा दिखाए। गांव के लड़कियां सब बैठ के ये सब काम करके अपने घर को चला रही है।
3: जो गांव की लड़कियां हैं जो बेरोजगार हैं या जो पलायन करने की तैयारी कर रही थी, तो उनका पलायन रोकने का भी एक हम लोग का मकसद है कि उनका पलायन रोके और उनका आजीविका कैसे बढ़े, किस तरह से उनका इनकम जनरेट हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो प्रशिक्षण हो रहा है ये हम लोग का माइग्रेंट लेबर प्रोजेक्ट एक चल रहा है तीन डिस्ट्रिक्ट में, खूंटी सिमडेगा और रामगढ़, तो उसके तहत ये इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: मुरहू के पेरका में काथा स्टिच का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि काथा स्टिच और एप्लिक वर्क की बाजार और मेला में जबरदस्त डिमांड रहती है। प्रशिक्षण ले रही नेहा देवी, सरानी ब्यूटी और अनस्तासिया तीड़ू ने बताया।
4: मेरा नाम नेहा देवी है और मैं खूंटी से आई हूँ। हम लोग यहाँ काथा स्टिच का सिलाई कर रहे हैं, तो घर बैठने से अच्छा है वहाँ बैठ के ट्रेनिंग कीजिए आप लोग, जो आप लोग स्वरोजगार कर सकते हैं, घर घर अपना चला सकते हैं, अपने पर आश्रित रह सकते हैं।
5: मेरा नाम है सरानी मुंडू, मैं मुरू डूडरी की रहने वाली हूँ। संस्था की ड्रेस दीदी हम लोगों को बताई थी कि यहाँ पे काथा स्टिच का ट्रेनिंग होगा, 18, 19, 20 ऐसे कुछ सिखाई है।
6: मेरा नाम है अनस्ताशिया तेड़ू, मैं खूंटी जिला के छोटा पांडू गांव से हूँ और हम लोग यहाँ 2 महीने से काथा स्टिच सीख रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पर हमारी ट्रेनर 16-17 स्टिचेस सिखाई है, जैसे कि हेरिंग बोन, एप्लिक, रन स्टिच, नेक स्टिच और बहुत सारे ऐसे स्टिचेस सिखाई है।
0: इस हफ्ते खूंटी में ईद उल अजहा पर भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक नमाज के बाद लोगों से मिले और उपस्थित बड़े छोटे सभी लोगों का मुंह भी मीठा कराया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
7: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को भी आप सुन रहे थे डॉली टेक प्रेम कथा में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में, फिल्म है लुटेरे।

शान और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रतन धन पायो में। इसी के साथ ही झनकार का हमारा ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं जी, पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है प्रेम पर्वत।

एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

सुमन पुजारी में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, इसी के साथ ही ऑल टाइम हिट्स का ये खूबसूरत सा छोटा सा सफर यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम कानूनी सलाह। आज आप सुनेंगे रीना वर्मा से ली गई ये बातचीत। विषय है कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार, और इनसे बातचीत की है सूरज रजक ने।
1: श्रोताओं, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला अधिकारों के प्रति बहुत सारे काम किए गए हैं और महिलाएं बाहर निकलकर काम करने लगी हैं। कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा तबका उभर कर सामने आया है, साथ ही कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई है। इन चुनौतियों से सरकार किस तरह से निपटी है, उनके लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ है वरीय अधिवक्ता रीना वर्मा जी, तो आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले कामकाजी महिला की परिभाषा बताइए कि कौन कौन सी महिलाएं कामकाजी महिलाएं मानी जाती हैं।
2: देखिए, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हर औरत जो है कहीं ना कहीं काम करती है। वो घर का काम तो करती ही है, अक्सर वो पैसा कमाने के लिए घर के बाहर भी काम करती है। काम करने वाली औरतों को मालूम होना चाहिए कि उनके कुछ मूल अधिकार बनते हैं। ये मूल अधिकार सरकार ने कानून बनाकर तय किए हैं। ये कौन से अधिकार है? पहली बात, हर काम करने वाले को काम के लिए वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत। दूसरी बात, ये वेतन या तनख्वाह कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी सरकार ने तय की हो, यानी न्यूनतम वेतन हर हाल में मिलना चाहिए। तीसरी बात, बराबर के काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए, यानी एक ही काम के लिए एक काम के लिए औरत को पुरुष के बराबर ही पैसे मिलने चाहिए, न कि कम। चौथी बात, औरतों को गर्भावस्था प्रसूति से संबंधित कुछ खास अधिकार दिए गए।
1: प्रसूति अधिकार कुछ विशेष महिलाओं को मिले हुए हैं, तो ये किस तरह के अधिकार हैं और इसका कितना फायदा समाज को मिलता है?
2: देखिए, प्रसूति के लिए महिलाओं को आप देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं हैं जो फैक्ट्री में काम करती हैं, और कोई महिला है जो ठेकेदार के अंतर्गत में काम करती हैं, और आप देखते होंगे या हमारे श्रोता देखते होंगे कि वो गर्भावस्था के दौरान भी काम करती है। तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसमें गर्भावस्था के दौरान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कानून बच्चा पैदा होने के बाद और मातृत्व की शुरुआत के दिनों में जो महीनों में दी जाती है सुरक्षा, उसकी सुविधाओं के लिए ये कानून बनाया गया। कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। ये छुट्टी पूरी वेतन के साथ होनी चाहिए, ये नहीं कि छुट्टी मिल गई और वेतन नहीं मिला, ऐसा नहीं है।
1: 12 हफ्ते
2: की छुट्टी मिलेगी जो गर्भावस्था के दौरान होती है। यदि महिला शादीशुदा न हो तो भी उसे प्रसूति की छुट्टियां लेने का अधिकार है। ये छुट्टियां वह महिला
1: इस छुट्टी पर किसी तरह की कटौती नहीं की,
2: किसी तरह की कटौती और किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता कि आप शादीशुदा नहीं है और तो प्रसूति का आपको छुट्टी कैसे मिलेगा। कभी कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं समाज के कि जिस दौरान माँ कुंवारी माँ भी बन जाती हैं और वो काम करती हैं, माने बहुत सी महिलाएं स्वतंत्र हैं, अलग
1: कारणवश छुपाती भी हैं,
2: छुपाती भी हैं, या फिर कोई मेडिकल तरीके से सिंगल मदर ही बनना चाहती हैं, तो उनको भी प्रसूति की छुट्टी मिलनी चाहिए। ये कानून है, कुछ दिन प्रसूति के पहले और कुछ दिन प्रसूति के बाद ले सकती हैं, अगर पूरी छुट्टी प्रसूति के बाद भी ले सकती हैं, मतलब 12 हफ्ते की जो छुट्टी है वो चाहे तो 9 महीने के दौरान या फिर 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तब 12 हफ्ते की छुट्टी ले सकती हैं। जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं उन्हें प्रसूति के लिए 135 दिन की छुट्टियां मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: अब सरकारी कार्यालयों में और निजी कामों में बच्चे के पिता को भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल सकती है ताकि वह पत्नी और बच्चे को भी देखरेख कर सके।
1: मतलब पिता को भी छुट्टी मिले।
2: हाँ, पिता को भी छुट्टी मिलती है। किसी स्त्री को प्रसूति के 6 हफ्ते पहले काम पर नहीं रखा जा सकता, मतलब जैसे गर्भावस्था पूर्ण होने वाला है और 6 हफ्ता पहले कोई जबरदस्ती काम कराता है तो ये कानूनन अपराध है। स्त्री में प्रसूति के 6 हफ्ते बाद तक भी काम लेना कानूनी अपराध है। यदि मालिक प्रसूति से पहले और प्रसूति के बाद आवश्यक डॉक्टरी चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे सकता तो उसे ₹250 मेडिकल बोनस यानी डॉक्टरी चिकित्सा का खर्च भी देना होगा। गर्भावस्था में काम के आखिरी 1 महीने के दौरान स्त्री से कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता जो स्त्री के शरीर को थका दे। कोई ऐसा काम भी नहीं करवाया जा सकता जिसमें स्त्री को लंबे समय के लिए खड़ा रहना पड़े या भारी वजन उठाना पड़े। आप बकायदा ऐसा काम करने के लिए इनकार कर सकती हैं। जो भी महिलाएं श्रोता सुन रही हैं, जिसमें पेट से में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा हो। यदि बच्चा गिर जाता है तो स्त्री को बच्चा गिरने के बाद 6 महीने का छुट्टी मिलना चाहिए। जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही है उन्हें 45 दिन की छुट्टियां मिलनी चाहिए। यदि कोई स्त्री गर्भावस्था के कारण, बच्चा गिर जाने के कारण, प्रसूति के कारण 9 महीने से पहले बच्चा हो जाने कारण बीमार पड़ती है तो उसे 1 महीने की अधिक छुट्टी पूरी वेतन के साथ दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर 6 हफ्ते और 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। बच्चे का जन्म हो जाने के बाद स्त्री काम पर लौटती है तब बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे दिन में 2 बार समय दिया जाना चाहिए। बच्चा 15 महीने का होने पर माँ की यह सुविधा मिलनी चाहिए कि 2 बार दिया जाने वाला समय आमतौर से दिए जाने वाले आराम के समय के अलावा दिया जाता है। अगर बच्चा पेट में या पैदा होने के बाद मर जाता है तब भी माँ को यह सुविधाएं मिलेगी। मतलब कहने का तात्पर्य कि गर्भावस्था के दौरान अगर कभी होता है कि कुछ कारणवश बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो भी प्रसूति के बाद की छुट्टी उन्हें मिलनी चाहिए आराम करने के लिए। यदि बच्चा होने के बाद माँ की मौत हो जाती है तब भी प्रसूति के 6 हफ्तों का वेतन दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अगर काम कर रही है, माँ का डेथ हो गया तो वो पैसा जो है उसके पति को मिलना चाहिए बच्चे के लिए।
1: अच्छा एक बात और, जैसे कि 6 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, 12 हफ्ते की कहीं छुट्टी मिल रही है तो इस सवैतनिक छुट्टी होती है ना?
2: जी जी, ये मैंने बताया ना कि ये वेतन के सहित छुट्टी है, वेतन की कटौती नहीं होनी चाहिए। और अगर माँ का डेथ हो गया तो 6 हफ्तों का वेतन जो है वारिस को दिया जाएगा, जैसे उसके बच्चे को, पति को या उसके माता पिता को भी दिया जा सकता है। स्त्री चाहे तो अपने नोटिस के पत्र में किसी का भी नाम दे सकती है जिसके उसके मरने के बाद का पैसा दिया जाए। परंतु यदि माँ के साथ बच्चे की मौत हो जाती है तो केवल बच्चे के मरण दिन तक का वेतन दिया जाएगा। ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वेतन में काम करने वाली स्त्री अपने प्रसूति के पहले 12 महीनों से उस मालिक के पास कम से कम 80 दिन काम की

0: किया हो, मतलब
1: ये एक शर्त है,
0: ये एक शर्त है कि 12 महीने में 80 दिन वो काम की हो वहाँ पर कम से कम। स्त्री को चाहिए कि वो मालिक को अपनी गर्भावस्था की सूचना दे, सूचना लिखित रूप से देना ठीक रहता है। इस नोटिस के स्त्री को अपनी प्रसूति संबंधित तारीख और छुट्टी में जाने की तारीख लिखनी चाहिए। उसे यह भी लिखना चाहिए कि छुट्टी के दौरान कहीं और काम नहीं करेगी। अगर कोई स्त्री पहले से नोटिस नहीं दे सकती तो उसे प्रसूति के बाद यह सूचना दे देनी चाहिए कि प्रसूति के पहले की छुट्टी के पैसे और जाने के बाद मिल जाने चाहिए। प्रसूति 6 हफ्ते के बाद यह सुविधा आपको प्रसूति की सूचना देने के 48 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए।
1: अच्छा, जैसे कि ये सरकारी और गैर सरकारी सभी जगह नियोजित महिलाओं के लिए है?
0: जी, ये दोनों जगह लागू होता है। मैंने बताया ना कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं और सरकारी दोनों के लिए लागू होता है।
1: तो अगर गैर सरकारी क्षेत्र में है तो वहाँ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र की महिलाएं हैं, तो इस बारे में कुछ अलग अलग प्रावधान हो तो इस बारे में कुछ बताइए।
0: नहीं, वैसा संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए सेम प्रावधान ही नियम बनाए गए हैं, और अगर ऐसा उनके साथ नहीं होता है तो वो लेबर ऑफिसर या लेबर कमिश्नर के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
1: रीना वर्मा जी, जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं वहाँ सबसे ज्यादा चुनौती हैं, तो सरकार द्वारा कोई प्रावधान यहाँ है या नहीं?
0: बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। उसके लिए भी सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है, फैक्ट्री अधिनियम 1948। इसमें क्या है कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय और दरवाजे और गुसलखाने होने चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, मतलब जरूरी तौर पे होने चाहिए। जहां 30 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, उस फैक्ट्री में एक क्रेस या झूला घर यानी बच्चों की देखभाल करने की जगह जरूर होनी चाहिए, और सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होनी चाहिए। महिलाओं से निश्चित वजन से ज्यादा वजन नहीं उठवाया जाना चाहिए। महिलाओं से किसी भी चलती मशीन को साफ करवाना या तेल लगवाना मना है। महिलाओं से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करवाना चाहिए। फैक्ट्री में ओवर टाइम का काम नहीं लिया जा सकता है। हफ्ते में एक दिन का अवकाश और छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए। 5 घंटों से अधिक लगातार काम महिलाओं से नहीं करवाना है। काम सिर्फ सुबह 6 बजे से और रात के 7 बजे के बीच ही करवाना है। तो ये फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को, जैसे असंगठित क्षेत्र के अंदर ये किया गया है, कानून बनाया गया कि जो भी महिलाएं हैं, श्रोता हैं, सुन रहे हैं, जो फैक्ट्री में या ईंट भट्टों में कहीं भी काम करती हैं, तो ये सब अगर कानून का पालन वहां के मालिक नहीं करते हैं तो वो जाकर शिकायत श्रम अधिकारी के पास दर्ज कर सकती है।
1: आज इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी बात, जैसे कि जब कामकाजी महिलाएं होती हैं, ऐसे समाज में देखने को मिलता है कि अलग अलग वेतन दिया जाता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है?
0: अलग अलग वेतन जो दिया जाता है उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है, समान प्रासर्मिक अधिनियम 1976। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि एक तरह के काम के लिए स्त्री और पुरुषों को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही तरह के काम में लगे रहते हैं, पर पुरुष को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये गलत है। ये जरूरी नहीं कि काम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, या एक या समान कार्य उससे कहेंगे जो मिलते जुलते हों, जिनमें करीब करीब एक जैसी मेहनत लगती हो। जिस काम के लिए पुरुषों को भर्ती किया जाए उस काम के लिए स्त्री को भर्ती होने का हक है, अगर वे उस काम को काबिल से कर सकती है।
1: मतलब अगर नियोजन के दौरान किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए,
0: नहीं होना चाहिए, और काम में लगाने वाला व्यक्ति यानी मालिक किसी भी स्त्री के कामगार से वेतन में, भर्ती में, बढ़ोतरी में, तरक्की में, बदली में भेदभाव अगर करता है तो वो कानूनन अपराध है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको इसलिए काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है कि आप स्त्री हैं, तो उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। मालिक अगर भेदभाव करके समान वेतन नहीं देता है तो उसको 2 साल की सजा और कम से कम 10,000 रूपए से लेकर के 20,000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
1: रीना वर्मा जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कार्यस्थल पर बहुत तरह के ऐसे अवांछित व्यवहार भी महिलाओं के साथ होते हैं जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है?
0: ये भी आपने बहुत ही अच्छा शीर्षक उठाया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो होता है, अक्सर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उनको समझ नहीं आता है कि वो दोषी के खिलाफ क्या और कैसे कदम उठाए। इस तरह से व्यवहार कानूनन अपराध तो है ही, लेकिन रोजमर्रा की बात थाने तक ले जाना कई महिलाओं के लिए संभव नहीं होता है। इस परेशानी को देखते हुए 1997 में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार के कुछ मामले को निर्देश दिया, जिसमें क्या था, यौन उत्पीड़न। अगर कोई भी आपका कलीग शारीरिक स्पर्श या यौन मित्रता की कोशिश की मांग करता है तो ये गलत है। यौन संबंध स्थापित करने का अनुरोध करता है तो भी गलत है। यौन संबंधी टिप्पणी या मजाक करता है तो भी गलत है। अश्लील पुस्तक या चित्र दिखाता है ये भी गलत है। किसी भी तरह का यौन संबंधी अनचाहा व्यवहार करता है तो ये गलत है। तब महिलाएं जो हमारी श्रोता है वो क्या करें, वो ये करें कि उन यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए उन्हें ये करना है कि मनाही जहां पर यौन उत्पीड़न की मनाही यथोचित तरीकों से प्रकाशित की गई है, सूचित या वितरित की गई, जैसे कोई पोस्टर वगैरह है जिसमें न्यूड फोटो वगैरह है, या फिर सरकारी या पब्लिक क्षेत्र में कर्मचारियों पर लागू होने वाले नीति नियम निर्देश में यौन उत्पीड़न की मनाही और दंड प्रावधान दिए जाएंगे। मतलब वहाँ चिपकाना होता है कागज जो विशाखा कमेटी के अंतर्गत बनाए गए हैं, तो जहाँ वो काम करती हैं तो वहाँ जरूर से वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक है या जो भी है उनका ये बनता है कि सूचना जैसे हर जगह चिपकाते हैं ना, जैसे कृपया शांति बनाए रखें, तो उस तरह से एक पोस्टर चिपका देना चाहिए निजी संस्थानों में। स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रावधान होना चाहिए कि यहाँ पर देख लीजिए भाई, आप काम करे तो यहाँ गलत हरकत नहीं होने चाहिए।
1: अरिना जी, जैसे कि एक बात और देखते हैं, जैसे अभी है कि ये ऑनलाइन का जमाना है और मोबाइल फोन ज्यादा चलता है, स्मार्टफोन का, तो वो भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है, कई शिकायतें इस तरह की आती हैं, तो ये सारे प्रावधान वहाँ भी लागू होंगे?
0: बिल्कुल, वहाँ भी लागू होंगे। महिलाओं को अगर कोई व्हाट्सएप पे कुछ गलत करता है तो ये सब प्रावधान वहाँ भी लागू होंगे। वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर, और वो विशाखा कमेटी, हर एक कार्यस्थल पर एक विशाखा कमेटी होनी चाहिए जिसमें कि एक सदस्य वहीं के जो फैक्ट्री है या जो संस्थान है वहाँ के होंगे, एक बाहरी सदस्य होंगे और एक पुलिस अधिकारी होते हैं वहाँ पर। इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई तथाकथित व्यक्ति अपने कलीग के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो वो महिला जागरूक होकर वहाँ पहले आवेदन देगी और वो तथाकथित व्यक्ति को नोटिस करवाएगी। नोटिस करवाने के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो फिर उसको नौकरी से संबंधित बर्खास्त किया जा सकता है या डिसमिस किया जा सकता है। अगर वो आता है, अगर माफी मांग लेता है, तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने का एफिडेविट उसे लिया जा सकता है। तो ये हो गया कि अपने कार्यस्थल की बात कार्यस्थल तक रह गई, बदनामी नहीं हुई, मामला वहीं शांत हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधर रहा है तो फिर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धाराएं लगती हैं 354 बी या उससे ज्यादा कोई अपराध हो रहा है 376 के अंतर्गत में, तो महिलाएं फिर थाना की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। लेकिन कार्यस्थल के लिए कानून बनाए गए हैं कि विशाखा कमेटी के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो महिलाएं एक तो ये कर सकती हैं कि 4-5 महिलाएं एक साथ है तो वो जागरूक रखे, एक संगठन के रूप में रहे ताकि कोई भी पुरुष उनको परेशान ना कर सके। दूसरा, वो अपने कार्यस्थल में जहां काम कर रही हैं वहां एक पोस्टर चिपका के रख सकती हैं कि कृपया यहां गलत सलत बातें या जो पोस्टर वगैरह ये ना किए जाए, तो इस तरह से वो अपना रक्षा और अपना बचाव कर सकती है।
1: चलिए, बड़ी अच्छी बात हुई, और बोला था कामकाजी महिलाओं के संबंधित सारे अधिकारों की चर्चा आज हमने इस बातचीत में हमसे
0: बिल्कुल,
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों से महिलाओं को लाभ होगा, कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा जो इस तरह की समस्याओं से अक्सर जिन्हें सामना करना होता है।
0: जी, जी।
1: तो रीना वर्मा जी, आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर अभी आप सुन रहे थे रीना वर्मा से ली गई बातचीत। इसी के तहत कानूनी सलाह का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पैसे फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है आस का पंछी और जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उन कुछ श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें। उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपौरव और टुको, ये सभी हमारे श्रोता है डम्बाडी हरली बड़का गांव के। सीताराम मलाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन, जीटी रोड बरही से इन्होंने पत्र भेजा है। दिलीप ठाकुर, अरविंद ठाकुर, इंद्रपुरी हजारीबाग से। तिलक रॉय, इन्होंने यह पत्र भेजा है साई मंदिर के पास इंद्रपुरी हजारीबाग से। झुमरी तिलिया के हमारे श्रोता है जगन्नाथ प्रसाद साहू। तो अपने सभी श्रोताओं के साथ मिलकर आइए हम सब इस खूबसूरत से गीत का आनंद उठाते हैं।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत अर्पण फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज है। और जिन श्रोताओं ने इसके लिए पत्र भेजे हैं उनके नाम हम आपको बता दें। माधवघाट अमलेश्वर के हमारे श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर का। महलोनिया झरपो के हमारे श्रोता हैं रामचंद्र प्रसाद, अर्जुन महतो, सुनैना देवी, सुनील और डावर। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से हमें यह पत्र भेजा है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। बिलावल हजारीबाग के हमारे श्रोता है रहमत नगर आरिफ सबा और शमा जूही और अलिफ रजा का। सिंगानी कुर्रा हजारीबाग से यह पत्र भेजा है रूबी देवी, सुमन रानी, श्री प्रसाद और अनुराग राज ने। और नया टोला भीकनपुर भागलपुर के हमारे श्रोता हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा, विकास, नितिन और मनोज पासवान का। ब्रजलाल सोनी, उन्होंने कुमाटोली हजारीबाग से हमें पत्र भेजा है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लवई से गुलाब दास मानिकपुरी। तो आइए अपने इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं इस गीत का।

0: श्रोता साथियों, लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म अर्पण के इसी गाने के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत ही समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 8:10 होने वाले हैं। आइए अब हम आपको शामिल करते हैं अपने रांची केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला के तहत वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण विषय पर कार्यक्रम।
1: देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samrit Bharat. Join Indian Navy.
5: दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में संगीत ही वो साथी होता है जो थके मन को सुकून देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फिल्म संगीत में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। आज का ये विशेष कार्यक्रम आप सुनिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic

0: Technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
0: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
1: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
0: Absolutely. Mr. Tandon.
2: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टैक्स में छूट जीएसटी का सरलीकरण डिजिटल क्रांति हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जीएसटी रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें जनधन योजना की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया
0: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है
0: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 इयर्स विद मोर देन 25 क्रोर पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास हाउ बिग एन अचीवमेंट वुड डू यू थिंक दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट शरद जी
1: आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट बिकॉज 25 क्रोर मे बी अ वेरी इजी नंबर टू स्पीक But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि poverty index की जो definition बदला गया. You know we've changed the definition because आप poverty को पहले कैसे define करते थे इतने रुपए रोज का. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है. You know on nutrition, on health. आपके पास घर नहीं है. Tomorrow you get a house. You don't have a water connection, now you have a water connection. And let's not forget about the toilets, which has been, you know, sanitation has been very close to Prime Minister's heart. You know, jungle mein aur kheton mein jaake, you know, toilet ka istemal karna ya wahan par idhar udhar baith ke mahilaon ke liye khas kar bahut. So I think now there are toilets. So the multidimensional poverty index needs to be understood, Anubha. From the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal

0: middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn. But today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities.
0: Absolutely.
1: Which is everybody's right and which should they should get.
0: No, but the thing is that me and you can call them basic. But for them, it was a luxury at one point of
1: right.
0: time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas yeah. Yojana. You know, the whole sanitation program which has yeah. been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, okay. the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pahunchaya aur middle class to usme aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke ab mujhse jab log poochte hain kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaen ghatti rehti hain welfare scheme, to you take it in your stead. Aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha, bhai ye to mera haq hai, wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya hai, which I am sure the listeners of Akashwani would like to dwell upon and deep dive is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले आप कहां खड़े थे. शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014 और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है. आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री. इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है.
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले जी स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी.
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है.
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव. देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी. आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी

0: so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar. You also create rozgar for other people. That for me, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati hai, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean people have opened their arms and embraced it, usse puri ki puri arthvyavastha pe farak pad gaya hai.
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है. बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स. सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax-related reforms in the past decade impacted middle class? Sir Tandon, what would you say to that?
2: देखिए, इसमें एक और पहलू भी है
1: जी,
2: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर. तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया, उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है. तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग, तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिला कर अगर देखें तो मैं समझता हूं मिडिल क्लास आज बहुत खुश है. और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर रहे, अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें, तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा.
1: शरद जी, यू नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज यू नो इन फैक्ट चेंज 4 टाइम्स, इट इज इंक्रीज 4 टाइम्स सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ यू नो द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस. सो वट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास यू नो मच ईजियर एंड

0: क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आ
1: जाए। जो पिछले 12 सालों में
0: काम किया है हमें उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनी वेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
1: अशोक जी आप कुछ कहें?
2: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होगा।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything, for example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years. I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी, कपड़ा, मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरी हो रही है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे, हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू रुपया, जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har varg ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain, ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुमा नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन्स। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर and said that you know jo self help groups hain wahan par mahilaye ikatti hoke kuch business shuru kar rahi hain, ministry of cooperative ban gayi hai jahan se bahut sari cooperative societies ke zariye mahilaye aage aa rahi hain, aur aap agar dekhen iska result kahan dikh raha hai anubha, to aap dekhen ki jab bhi results aate hain kisi bhi examination ke, wahan mahila candidate sabse aage hoti hain, ye is baat ko batata hai ki sarkar ne mahila education ko aur mahilaon ke sashaktikaran ko kitna seriously liya hai, aur hamari aadhi abadi hain, to mujhe lagta hai kabhi bhi unke sath bhedbhav to kabhi bhi justified nahi tha। पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूँ उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूँ ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही।

0: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
1: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
0: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
0: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
3: Thank you.
4: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on... नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
5: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं

0: जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
7: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
5: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
9: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपने स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राज

2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, रामजी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में रामजी लंदन वाले बनी और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शांत संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थी और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर, स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

फिर बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म अपनापन में। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म है शोर।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनिता का गीत। इसी के साथ ही रजनीगंधा का आज का ये खूबसूरत सा सफर यहीं समाप्त होता है। रेडियो के अपने साथी सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो को घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले 1978 ईस्वी में बनी फिल्म अखियों के झरोखे से कुछ गीत।

फिर बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

हम आपको बता दें कि हमने ट्यून किया है एफएम हजारीबाग 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। कार्यक्रम है एक फिल्म से, आज की फिल्म है अंखियों के झरोके से। इस फिल्म के लिए गीत लिखे हैं रविंद्र जैन ने और संगीत खुद रविंद्र जैन साहब ने ही तैयार किया है, और इन खूबसूरत से गीतों को अपनी आवाज दी है हेमलता, रविंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह और जसपाल सिंह ने।

फिर बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यही समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे फिल्म अखियों के झरोके से के कुछ गाने। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।